सफाई कर्मचारियों का काम उनकी जिम्मेदारियां, मुश्किलों और परेशानियों को ठीक से समझें। सफाई कर्मचारियों को फायदेमंद योजनाओं की जानकारी दी जाए, साथ ही ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उन्हें इज्जत और मान सम्मान मिले। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है सफाई कर्मचारियों का काम और उनकी समस्याएं, सरकारी योजना और कानूनी सुरक्षा, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग, पहले और बाद में पूछे गए कुछ सवाल। सवाल नंबर एक, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? श्रोताओं, ये तीन सवाल हैं, इसके जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, इसीलिए कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के लिए इन योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा मिलता है। ये इलाज बड़े अस्पतालों में भी कराया जा सकता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना सफाई कर्मचारियों और अन्य लोगों के जीवन बीमा का फायदा देती है। अगर किसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीसरी योजना है। इस योजना में ऐसे मामलों में मदद की जाती है जब किसी सफाई कर्मचारी की गंभीर दुर्घटना हो जाती है, अगर दुर्घटना में मौत या पूरी तरह से अपंगता हो जाती है तो 2 लाख की सहायता राशि मिलती है। अगर कुछ हद तक अपंगता होती है तो 1 लाख तक की मदद दी जाती है। स्वच्छता योद्धा, स्वच्छता के गुमनाम नायक,

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदेलखंड पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। मैं हूं आपकी आरजे वर्षा और मेरे साथ है मेरे आरजे आरजे
1: माता दीन।
0: कभी भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, दूसरों को भी साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे माता दीन। आज हम एक खास एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम उन लोगों की बातें करेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी तारीफ कम होती है।
0: बिल्कुल सही कहा माता दीन, वे ना तो सूट पहनते हैं और ना ही बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, लेकिन उनके बिना साफ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ना साफ सड़कें, ना ठीक से चलने वाले शौचालय और ना ही रोज की सफाई होगी।
1: आज का एपिसोड उन सफाई कर्मचारियों के बारे में है जो स्वच्छता के असली हीरो हैं। वे गलियां साफ करते हैं, सेप्टिक टैंक खाली करते हैं, नालियां साफ करते हैं और कई बार बहुत मुश्किल हालात में भी लगातार काम करते रहते हैं ताकि साफ, सुरक्षित और रहने लायक माहौल बना रहे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि नाली, स्कूल परिसर या सार्वजनिक शौचालय किसने साफ किया? ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।
1: हाँ, उनका काम दिखता तो है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उनके काम के साथ साथ उनकी जिंदगी और परेशानियों की बात भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि वे भी सुरक्षा, मदद और सम्मान के हकदार हैं।
0: वे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, जैसे गंदे टैंक साफ करना, जाम नालियों को खोलना, भारी मशीनें चलाना और कचरा साफ करना। इन कार्यों की वजह से उन्हें हैजा, टाइफाइड, पीलिया और सांस की बीमारियों का खतरा बना रहता है।
1: एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 50 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से करीब 20 लाख लोग ऐसे काम करते हैं जो बहुत जोखिम भरे होते हैं। सोचिए, अगर ये बिना मास्क, दस्ताने या सुरक्षा उपकरणों के काम करते हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती होगी।
0: ये काम बहुत खतरनाक होता है। दुख की बात ये है कि ये लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफाई कर्मचारी कई बार कम वेतन में नौकरी की गारंटी के बिना मुश्किल हालात में काम करते हैं।
1: लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने खासकर स्वच्छ भारत मिशन के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। कुछ खास योजनाएं हैं जिसका उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और सम्मानित बनाना है।
0: दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय यत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र अभियान यानी नमस्ते योजना के बारे में बात करेंगे। ये योजना दो मंत्रालयों, सामाजिक न्याय मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की साझी पहल है।
1: इसका मकसद सूखी शौचालयों, खुली नालियों या सेप्टिक टैंकों से मानव मल को बिना मास्क या दस्ताने के हाथ से साफ करने की खतरनाक प्रथा को समाप्त करना है।
0: नमस्ते योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को वैक्यूम मशीन चलाना सिखाया जाता है और उन्हें मास्क, दस्ताने, जूते और सुरक्षा साधन जैसे जरूरी सामान इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें इलाज के लिए बीमा और कानूनी सुरक्षा भी मिलती है।
1: क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को बिना सुरक्षा के शिविर साफ करने को मजबूर किया जाए तो ये भारतीय कानून के हिसाब से गलत माना जाता है?
0: हाँ, मुझे पता है। सफाई कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर में भेजना गलत है। ऐसा करना

0: उनके खिलाफ है।
1: सही कहा, लेकिन कई जगहों पर नियम का पालन नहीं होता है। सफाई कर्मचारी को बस एक बाल्टी देकर गंदे माहौल में उतरने को मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें हैजा, पीलिया और सांस की बीमारी जैसी समस्याओं का खतरा रहता है। साथ ही चोट लगने और जहरीली चीजों से नुकसान का डर भी रहता है।
0: मुझे लगता है कि उचित कदम उठाने का समय आ गया है। कानून का पालन करें और साफ सफाई का काम करने वालों को सम्मान दें।
1: और यही पंचायतों की भूमिका शुरू होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पंचायत की जिम्मेदारी है कि सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहें, उन्हें अच्छा वेतन मिले, उन्हें काम की ट्रेनिंग दी जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए।
0: पंचायत सफाई कर्मचारियों की सूचना एक जगह जमा कर सकती है, उन्हें फोटो वाले पहचान पत्र दे सकती है और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ सकती है, जैसे इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और गैस कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना।
1: चलिए अब इन योजनाओं की और जानकारी देते हैं।
0: बिल्कुल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJAY एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत हर योग्य परिवार को अस्पताल में इलाज के लिए साल भर में 5 लाख तक की मदद मिल सकती है। इसके लिए सफाई कर्मचारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम पंचायत ऑफिस जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाना होता है। पंचायत उन्हें ई हॉस्पिटल ID बनवाने और क्लेम की प्रक्रिया समझाने में मदद भी करती है। इस तरह अगर परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती है।
1: और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण यानी PMAY जी की ये योजनाएं लोगों को पक्के घर बनवाने में मदद करती हैं। इसके तहत उन्हें जरूरी सुविधाएं वाले घर बनाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। प्रक्रिया आसान है, वे अपने ग्राम पंचायत के ऑफिस जाएं, वहां उनके आधार कार्ड और जमीन के कागज देखे जाएंगे, फिर पंचायत उनका आवेदन करेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो उन्हें घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं।
0: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मौत होने पर 2 लाख का कवर देती है। ये योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए कम सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। सालाना प्रीमियम ₹436 प्रति व्यक्ति है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 18 से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए अचानक मौत या अपंगता के लिए 2 लाख रुपए तक का कवर देती है। ये योजना प्रति व्यक्ति ₹20 प्रति वर्ष के सस्ते सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।
0: देखिए, सफाई कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं हैं जिसका भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को आवेदन करने का तरीका पता नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि इस बारे में लोगों को बताया जाए। अगर आप सफाई के काम में लगे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो उन्हें जरूर अपनी पंचायत से बात करने और इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए कहें। इससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है।
1: हाँ, ये उनके लिए बहुत काम की बात होगी। पंचायत को समय समय पर ऐसे कैंप भी लगाने चाहिए जहाँ सफाई कर्मचारियों को लाभ देने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाए।
0: ये बहुत काम की बात होगी। ये भी ना भूलें कि हर कर्मचारी को काम की जगह पर PPI किट, साफ शौचालय, पीने का पानी और फर्स्ट एड की सुरक्षा मिलनी चाहिए।
1: एक और जरूरी बात है, सफाई कर्मचारियों के लिए सेहत से जुड़े कैंप का आयोजन होना चाहिए। वे अक्सर खतरनाक चीजें जैसे संपर्क में आते हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी है कि पंचायती राज संस्थाएं समय समय पर उनकी डॉक्टर से जांच कराएं, समय समय पर टीके लगवाएं और लगातार मदद देते रहें।
0: प्रशिक्षण भी उतना ही जरूरी है। सफाई कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा औजारों के इस्तेमाल, मशीन चलाने और

0: डिजिटल साक्षरता का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फायदे ऑनलाइन देख सकें।
1: ये सब तो समझ में आती है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ।
0: बताओ क्या बात है?
1: मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम सफाई कर्मचारियों के नाम जानते हैं, उनके परिवार के बारे में कुछ जानते हैं, और क्या हम उनके लोगों को धन्यवाद कहते हैं जो हमारी गलियां, नालियां, शौचालय और सड़कें रोज साफ करते हैं।
0: शायद ही कभी, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए। हमें ये तय करना चाहिए कि सफाई दिवस पर ग्राम सभा की बैठकों में, स्कूल के कार्यक्रमों में सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जाए, उनके काम के लिए उन्हें इज्जत, मान सम्मान और पहचान मिले।
1: हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सोच है। महीने का सबसे अच्छा सफाई कर्मचारी जैसा बेज भी किसी को गर्व महसूस करा सकता है।
0: ये कोई दान नहीं बल्कि इज्जत है। ये तो बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। हमें अपने सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान भरा काम करने का माहौल बनाना होगा। जैसे बाकी काम होते हैं, वैसे ही सफाई भी एक काम है।
1: तो श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में हम हर सफाई कर्मचारी, चाहे वो अब काम कर रहे हों या पहले करते थे, को सलाम करते हैं। उन्होंने चुपचाप मेहनत की है, गलियां साफ की हैं, नालियां खोली हैं, हमारी जिंदगी को साफ और सेहतमंद बनाया है। हम आपसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखे तो उन्हें धन्यवाद जरूर दें, उन्हें पानी, चाय या कुछ खाना दें, और सबसे जरूरी बात है उन्हें सम्मान दें। उनका काम इज्जत के काबिल है।
0: सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, याद रखिए कि सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले PPI किट पहनना भले ही थोड़ा असहज लगे, लेकिन ये आपकी जान बचाता है। दस्ताने, जूते और मास्क आपको खतरनाक बीमारियां और जहरीले गैसों से बचाते हैं। हर बार जब आप इन सुरक्षात्मक चीजों को पहचानना भूल जाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने परिवार की सेहत को भी खतरे में डालते हैं। आपके कपड़ों पर लगे कीटाणु आपके बच्चों और जीवन साथी को भी बीमार कर सकते हैं। और हाँ, एक तय समय के बाद PPI किट बदलना बहुत जरूरी होता है। इसे साफ रखना भी उतना ही आवश्यक है।
1: प्यारे श्रोताओं, सुरक्षित रहिए, साफ रहिए। ये कभी मत भूलिए कि जो हमारे लिए सफाई करते हैं, वो भी पूरे गर्व के साथ जीने के हकदार हैं।
2: आइए स्वच्छ भारत का निर्माण सिर्फ साफ सड़कों से नहीं, बल्कि साफ दिलों से भी करें।
0: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम एपिसोड 11 यही समाप्त होता है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा हमारे नंबर पे कॉल करके। हमारा नंबर है 9219207749। श्रोताओं, जो सवाल हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूछे थे आपसे, एक बार फिर से उन कार्यक्रमों को यानी उन सवालों को हम दोहरा देते हैं। तो सवाल नंबर एक है, क्या सफाई कर्मचारियों को काम करते समय सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने पहनने चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा, क्या गांव के सभी सफाई कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा और आखिरी, क्या ग्राम पंचायत को सफाई कर्मचारियों की सेहत की जांच समय समय पर करानी चाहिए, हाँ या नहीं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अगर आपने यह कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से फोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप करिए इन तीनों सवालों के जवाब हाँ या नहीं में। आज के इस कार्यक्रम से जाने का होता है हमारा समय, और हम चलते हैं, फिर जल्दी ही आप सभी से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीमारियों से दूर रहिए।
2: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है,

0: विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे।
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि 12th के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, IAS IPS की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खासतौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है। बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विभूचन है कि अब हम कहाँ जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के न सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया और रेडियो जॉकी बनने के सपना, बहुत सारे युवा हमारे श्रोता जो इस रेडियो बुंदेलखंड को भी सुन रहे हैं, युवाओं का बहुत ग्लैमर होता है कि या तो वो टेलीविजन में एंकर बन जाएं, कार्यक्रमों को प्रस्तुत करें, या रेडियो में लोग उनकी बातों को सुने। यदि आपकी आवाज में माधुर्य है, मेलोडियस वॉइस है, आपकी वॉइस कल्चर बहुत अच्छी है, आपको संचार कौशल बहुत अच्छा है, बोलने की कला है और आप के पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक, मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं, इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करस्पोंडेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं, जो हमारे बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पर जो मोबाइल है वो उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है। मोबाइल या छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम, जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो अखबार हैं और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार हैं, आज तो क्षेत्रीय

0: भाषाओं में अखबार है। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है। और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे, धमाल में खूब कर रही हैं और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब हैं। तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा। दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है। मैं इस बात पर आने ही वाला था, हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टुडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम हैं। उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन mcu.ac.in वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है और निवाड़ में हमारा खंडवा परिसर है जो, और इसी तरीके से हमारा एमसीयू दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम यूजी पाठ्यक्रम कहते हैं, वो एनईपी आधारित 4 वर्षीय हमारे

0: राइटिंग में है जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं, इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर कोर्स शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर 2 साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच में विशेष व्याख्यान है मास्टर क्लासेस के लिए, हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो है, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे, और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री, उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वॉइस को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं करें, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें कोई भी अंतर वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाती हुई रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को है, अगले 3 हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया।

0: के लिए आभारी हूँ और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपना जॉब को भी देखते रहें, ये
0: थे। जी हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत हैं, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब की अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है। मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहाँ पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर भी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूँ तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेके और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो हम लोग भोपाल में इस पे विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर दतिया परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आपको उपयुक्त संगे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम उसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं, पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूंचा कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो एचओडी है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना करियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और

फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49 और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के 5 ओरछा। और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा, रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर। मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

की अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90 समाचार सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का मैं आरजे वर्षा बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। और साथियों आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम एक अपना ऐसा कार्यक्रम होता है जी कार्यक्रम में अपन और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी भई चर्चा होकर रहेंगे और जो चर्चा अपन और इनके लाने बहुत महत्वपूर्ण होते हैगी।

0: जो बहने हैंगी, महिलाएं हैं खास तौर से, वे क्या करती हैंगी के पूरे खानदान को ख्याल रखती हैंगी, सबको ख्याल रख लें लेकिन अपनों खुद को ख्याल रखो वे भूल जाती हैंगी। सो ऐसे में क्या होते कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैंगी, परेशानी आ जाती हैंगी, लेकिन वे अपनी परेशानी अपने घर वालों से साझा नहीं करती हैंगी। तो उनके लाने अपन और हैं जो रेडियो बुंदेलखंड पे कार्यक्रम हर हफ्ता लेके आउट हैंगे, ताकि अपनी बहनों को तनक जानकारी मिले कि अपनों स्वास्थ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं वो जितनों अपने बाकी लोगों को होते हैं वो। ठीक है, तो आज हम जो विषय पे चर्चा करने वाले हैंगे वो है वो HIV/AIDS। ठीक है, तो अब इतने देखो बहुत सारी चीजें आती हैंगी कि HIV के बारे में एक तो जानकारी बहुत कम रहूत हैगी, दूसरी जा हैगी कि इके बारे में कोनो बात ही नहीं करवो चाहूत है वो। ऐसा लगता है कि HIV कह दे तो समझ लो कोनो दुश्मन को, जानी दुश्मन को नाम ले लो है वो, सो इसे हमें बात ही नहीं करने। लेकिन आज अपन और ये कार्यक्रम में एके विषय को लेकर बातचीत करेंगे, तो अपने संगे एक्सपर्ट आज ही कार्यक्रम में उपस्थित हैंगे। तो हम पहले अपने एक्सपर्ट जो आई हैं मैम हमारी, उनसे हम चाहेंगे अपना परिचय भी हमारे श्रोता साथी अनुदी में।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मेरा नाम ऋतु पांडे है, मैं जैसा कि मैडम ने बताया HIV/AIDS एक्सपर्ट हूँ, झांसी क्लस्टर से। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा 12 अगस्त 2026 से 2 माह के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, सघन जागरूकता अभियान। इस अभियान का जो उद्देश्य है HIV/AIDS के प्रति सही जानकारी फैलाना, HIV/AIDS के लिए लोगों को प्रेरित करना जांच के लिए, और इससे जुड़े भ्रम एवं भेदभावों को दूर करना है।
0: बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा है, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस खास कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। मैम जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं गांव में इस बात को लेकर, HIV को लेकर, एड्स को लेकर, तो पहला सवाल यहां पर आता है कि HIV क्या है और यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है।
1: HIV यानी कि एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें यह वायरस जो है हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देता है, जो हमारे शरीर की एक सैनिक होते हैं जो रक्षा करते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, तो ये उसको प्रभावित करता है। और यदि समय पे इसकी जांच और उपचार ना मिले तो व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है,
0: यानी बहुत सारी और समस्याएं उसके साथ पैदा भी हो सकती हैं, आपके कहने का ये मतलब है।
1: जी बिल्कुल
0: मैम, अगर हम इसमें बात करें कि HIV और एड्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग एक ही मानते हैं इसको, या कोई नहीं मानता है, कोई अलग अलग मानता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि HIV और एड्स में अंतर क्या है आखिरकार।
1: देखिए HIV एक वायरस है और एड्स HIV संक्रमण की एक उन्नत अवस्था है, जिसमें कि शरीर में लक्षण आने लग जाते हैं विभिन्न बीमारियों के। हर HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, सही समय पर ARD दवाएं लेने से व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है, और हो सकता है HIV से एड्स की अवस्था से व्यक्ति पहुंच ही ना पाए।
0: बिल्कुल, तो मैम जब भी कोई बीमारी की हम बात करते हैं या किसी वायरस की बात करते हैं या उसकी चपेट में हम आते हैं, तो हमारा पहला सवाल होता है कि आखिरकार इसके लक्षण क्या होते हैं, या HIV के जो संक्रमण होते हैं वो किन कारणों से फैलते हैं।
1: देखिए HIV मुख्य रूप से 4 कारणों से फैलता है, जिसमें सबसे पहला कारण है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। दूसरा कारण है संक्रमित रक्त या रक्त से बने उत्पाद के संक्रमण से। संक्रमित सुई या सिरिंज साझा करने से HIV संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को गर्भावस्था में, प्रसव या स्तनपान के दौरान यह बीमारी हो सकती है।
0: जी, यानी कि जहां पर हम बात करते हैं HIV, तो वहां लोगों का दिमाग जो होता है वो एक ही जगह जाता है कि HIV यानी के गलत तरीके से या असुरक्षित यौन संबंध इन्होंने बनाए होंगे, तभी जाके ये समस्या या बीमारी इनको हो गई है। तो कई बार तो लोग इसी डर की वजह से इस पर बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैम अगर हम बात करें कि क्या HIV जो है वो हाथ मिलाने से, साथ बैठने से या खाना खाने से भी फैल सकता है।
1: देखिए बिल्कुल भी नहीं फैलता है, ये एक बिल्कुल सरासर मिथ है, भ्रांति है लोगों के मन में। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ उठने बैठने से, साथ में खाना खाने से, एक बर्तनों का इस्तेमाल करने से, मच्छर के काटने से, कैसे भी सामाजिक संपर्क से ये नहीं फैलता है। इसलिए HIV से जी रहे व्यक्ति के साथ हमें इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति बीमारी से नहीं डरता है बल्कि आसपास का जो वातावरण होता है, जो व्यवहार हो जाता है लोगों का, उससे वह बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है और बहुत गंभीर परिस्थिति उसकी आ जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये बीमारी है, तो उससे जैसे आप नॉर्मली सबसे बात करते हैं वैसे ही उससे भी आपको बात करनी है। अब अगर इसमें हम एक चीज और आती है बचाव की, तो क्या एचआईवी से बचाव के लिए क्या सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं और कंडोम का सही और नियमित उपयोग करें। रक्त चढ़ाने से पहले कोई भी हमेशा उसकी जांच सुनिश्चित करें कि कहीं किसी एचआईवी संक्रमित का ब्लड तो आपको नहीं चढ़ाया जा रहा है। इंजेक्शन या सुई हमेशा नहीं इस्तेमाल करें, किसी के साथ भी सुई साझा ना करें। गर्भवती महिलाओं की समय समय पर एचआईवी की जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि उसके होने वाले बच्चे को समय से, अगर किसी महिला को एचआईवी है तो समय रहते उसके बच्चे को कम से कम उस वायरस से बचाया जा सके।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने एकदम सही कहा है। और ये बहुत खतरनाक होता है जब एक माँ से बच्चे में ये बीमारी फैलती है। मैम, इसकी जाँच की अगर हम बात करें तो कब और कहाँ कराई जा सकती है इसकी जाँच?
1: यदि किसी व्यक्ति को एचआईवी का जोखिम, संक्रमण का जोखिम हुआ है या वो अपनी एचआईवी स्थिति के बारे में जानना चाहता है, तो एचआईवी की जांच करानी चाहिए। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आईसीटीसी सेंटर, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर होते हैं, जहां पे जांच और परामर्श निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। जांच के लिए किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में जाकर इसकी जानकारी ली जा सकती है।
0: बिल्कुल, और सरकार इन चीजों को लेकर बहुत अवेयरनेस भी फैला रही है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, हर जगह एचआईवी के आपको पोस्टर लगे मिलेंगे कि हमें अवेयर रहना है, सुरक्षित रहना है। हर चीज आपको, यहाँ तक कि फ्री में सारी फैसिलिटी दे रही है, फ्री में आपका पूरा इलाज भी करा रही है सरकार। लेकिन फिर भी मैम, अगर हम इसमें देखें कि लोग जांच कराने में झिझकते क्यों है आखिरकार?
1: ये इसका जो मुख्य कारण है एचआईवी को लेकर समाज में फैली हुई गलत धारणाएं, डर और कलंक है। कई बार लोग यही सोचते हैं कि एचआईवी की जांच कराने का मतलब है सीधा कि मुझे एचआईवी है, जबकि ऐसा नहीं है। जांच कराने का मतलब होता है हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए जांच कराते हैं, ताकि अगर हम समय पर इसका उपचार शुरू करें और एचआईवी की जांच की जानकारी और परिणाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है, इसकी जानकारी किसी को भी साझा नहीं की जाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे साथ एक सर और भी हैं जो इस पर विस्तार पूर्वक से और जानकारी देंगे।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: तो सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी कि आप भी अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय हमारे श्रोताओं को जरूर दीजिए।
4: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो बुंदेलखंड को। जी, मेरा नाम शैलेन यादव, मैं क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर और दिशा क्लस्टर झांसी से हूँ, और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे आमंत्रित किया, इसका आपको अपना बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: जी सर, सर मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी कि हम यहाँ पर एचआईवी की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की यहाँ पर एचआईवी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है, तो उसे आगे क्या करना चाहिए?
4: देखिए मैडम, जैसा कि हमारी अभी कई आपने प्रश्न किए हमारी मैडम से, उन्होंने कई विषय में आपको एचआईवी के विषय में बताया। यदि इस विषय में यदि कोई व्यक्ति या महिला या कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहले उसे धैर्य या घबराना चाहिए नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाए, धैर्य अपना आपा खो दे। सबसे पहले उसको अपनी जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए यदि पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ साथ ही वो यदि संक्रमण की पुष्टि उस पर पॉजिटिव आती है, तो व्यक्ति को संबंधित अपने नियरेस्ट आईसीटीसी केंद्र से जाकर के वो एआरटी सेंटर चला जाए, वहां पर वो आवश्यक परामर्श ले। इसके साथ ही साथ वो एआरटी की दवा नियमित रूप से लेना चाहिए, एवं एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का जीवन उतना ही है एक सामान्य व्यक्ति के इतना, जितना वो एचआईवी पॉजिटिव का व्यक्ति होगा।
0: जी, सर, इसमें एक और बात यहाँ पर आती है कि क्या एचआईवी का इलाज संभव है, क्योंकि कई बार मन में ये सवाल आते हैं लोगों के कि एचआईवी हो गया मुझे तो अब मुझे मरना संभव है, तय है मतलब मेरा मरना। तो जो एआरटी दवाएं मिलती हैं वो किस तरह से मदद करती हैं लोगों की एचआईवी में?
4: देखिए मैडम, जैसा कि एआरटी से

0: या कोई भी एचआईवी व्यक्ति से नहीं मरता है, ये तो एक मिथ्या है।
1: जी
0: वर्तमान समय में एचआईवी को जो शरीर में अगर पहुंच रहा है व्यक्ति के शरीर में, यदि एचआईवी का वायरस आ गया है, तो उससे क्या है कि हमारी एआरटी की जो दवा है वो उस वायरस को नए वायरस से पनपने से रोकती है। जो हमारा एंटी रेंटोवायरल थेरेपी है एचआईवी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है, एआरटी की दवा जो है वायरस की मात्रा को कम करती है, रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको सुदृढ़ करती है, मजबूत बनाती है,
1: जी
0: साथ ही साथ व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है, और
1: जी
0: इसके साथ ही हमारे नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक रहता
1: आवश्यक
0: है।
1: है जी। सर यहाँ पे अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो अगर एचआईवी संक्रमण होने पर बच्चे को संक्रमण से कैसे बचाया जा सकता है, यानी कि महिला में अगर ये संक्रमण पाए गए हैं तो उसके जो बच्चा है गर्भ में उसको कैसे इस संक्रमण से बचाया जा सकता है?
0: जी मैडम, इसके लिए क्या है कि गर्भावस्था में जब भी कोई गर्भवती महिला हमारी गर्भावस्था में हो, उस समय उसका एचआईवी का टेस्ट अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उस गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी एचआईवी की जांच जरूर सुनिश्चित करवा लें।
1: जी
0: यदि कोई महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई जाती है तो जल्द से जल्द उसको एआरटी के लिए उपचार के लिए जोड़ा जाता है, साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह से उसका प्रसव और उसके बच्चे की देखभाल की जाती है, जिससे कि माँ और उसके होने वाले बच्चे को एचआईवी के जोखिम को कम किया जा सके।
1: बिल्कुल सर, हम देखते हैं कि समाज में एचआईवी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और भ्रम फैले हुए हैं, तो आप अक्सर क्योंकि फील्ड में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, तो भी कौन सी भ्रांतियां और भ्रम होते हैं जो आपको अधिकतर और धारणाएं होती हैं जो सुनने में और देखने में आती हैं एचआईवी को लेकर?
0: जी, सबसे पहले तो भ्रम यह है कि एचआईवी छूने से नहीं होता है, साथ बैठने से नहीं होता है, गले लगने से, साथ में भोजन उसके साथ खाने से, इवन दैट उसके साथ उसके कपड़े यूज करने से, वॉशरूम यूज करने से, ये सारी मिथ्याएं हैं। इसके साथ एचआईवी का कोई भी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे शरीर में नहीं पहुंच सकता है। साथ ही साथ उपचार और नियमित एआरटी के साथ व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है, इसलिए हमें इन अफवाहों से बचना चाहिए और साथ ही साथ वैज्ञानिक सलाह पर हमें विश्वास करना चाहिए।
1: यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है, मैं उसके साथ खाना खा रही हूँ, बात कर रही हूँ, उसके साथ एक ही घर में रह रही हूँ, तो मुझे कोई खतरा उससे नहीं है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और मैं सामान्य उसके साथ भी वही बर्ताव करूँ जो बाकी सदस्यों के साथ कर
0: जी
1: रही हूँ।
0: जी जी जी
1: तो असर इसमें एक और बात आती है कि अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ परिवार और समाज को कैसे व्यवहार करना चाहिए?
0: जी एचआईवी से जी रहे व्यक्ति के साथ सम्मान, सहयोग और सामान व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ उसके अलग अलग अलग या थलग भेदभाव नहीं करना चाहिए। परिवार का भावनात्मक सहयोग उपचार को नियमित रखने में बहुत मदद करता है। हमें बीमारी से बचाव करना चाहिए, व्यक्ति से दूरी नहीं बनानी चाहिए।
1: जी सर, आजकल हम देख रहे हैं कि युवा वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है, लेकिन क्योंकि जब जांच की बारी आती है और खासतौर से किसी ऐसी बीमारी की, एचआईवी जैसी बीमारी की, तो युवा हमारे सबसे पीछे भागते हैं, वो आगे नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बात चार लोगों में फैलेगी, मेरे दोस्तों को पता चलेगी, तो मेरी छवि क्या बनेगी दूसरे लोगों के सामने। तो सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो युवा है उनको एचआईवी से बचाने के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए?
0: जी, मेरा तो युवाओं से यही संदेश है कि एचआईवी के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, गलत धारणाओं से बचें, अफवाहों से बचें, जिम्मेदारी और सुरक्षित व्यवहार अपनाएं, किसी भी जोखिम की स्थिति में बिना डरे झिझक के एचआईवी की जांच कराएं। सही जानकारी, सुरक्षित व्यवहार और समय समय पर एचआईवी के बचाव के महत्वपूर्ण साधन अपनाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को आज के इस कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में दी हुई है। अंत में सर, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या जागरूकता संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मेरा सभी श्रोताओं से यह संदेश है कि एचआईवी के बारे में जानकारी रखें, एचआईवी की जांच को लेकर डरे नहीं, जरूरत पड़ने पर आप उपचार लें, साथ ही एचआईवी से जी रहे लोगों के साथ भेदभाव न करें बल्कि उनका सहयोग करें। यदि एचआईवी छूने से नहीं फैलता है, न गलत जानकारी से फैलता है, हमें साथ ही साथ एक हमारा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है जिसमें जिसका वो नंबर है 1097, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी आपको एचआईवी के विषय में जानकारी चाहिए या लेना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें, जिससे भी जो भी आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उसको आप पूछ सकें और अपनी धारणाओं को, मिथ्याओं को दूर कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से चल के हमारे इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी

0: ये आप सभी ने दी हुई है और हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारे जो भी श्रोता हैं जिनके मन में कुछ भी भ्रांति या भ्रम चल रहे होंगे वो जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर आप और अधिक जानकारी हमसे चाहते हैं तो जरूर हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 9219207749 और सर ने जो नंबर आपको बताया था एक बार फिर से सुन लीजिए। सर एक बार फिर से वो नंबर बताएंगे, टोल फ्री नंबर
1: जी है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1097 1097।
0: इस नंबर पर आप टोल फ्री है, आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, तो फ्री में आप अपनी जानकारी इससे ले सकते हैं। आपको आपकी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी, तो बेझिझक होकर आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह से जाने का होता है समय, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। फिर होगी आप सभी से मुलाकात एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद।

सुनो और शाम के बातें बाता राग रंबा। ओए होए बा।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे हुई खुशहाल हुई और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज़्यादा बरसात को हो गई हैगी, तो ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथी ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई कर रहे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जो रथ हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए कैसे पर्यावरण बदलत है वो और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख वेखो और सुन वेखो मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मोनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रथ है वो और खेती भी रथ हैगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैंगे, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा है वो और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहेंगे काफ़ी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकत है वो, तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जासे पहले अपन एक नज़र डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनो का कथ है वो मौसम हमारे लाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संगे हैं वर्षा, तो भी मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई के लाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे बारे रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मैनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों आबे बारे 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आबे बारे 3 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इन्हें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुई है यदि दिखे तो कार्टप हाइड्रोक्लोराइट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवें। जिन किसान भाइयों की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवें। बादल छाये रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखबे की संभावना बनी हैगी। ईखो नियंत्रण करबे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 ईसी 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है वो। इके नियंत्रण हेतु क्लोनाफॉस 25 ईसी दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंदगलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है गो। सो साथियों इके लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनको जेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज़्यादा हरी घास ना खान देवे, नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाए रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे, संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों आप सब जने सुन रहे थे जा जानकारी, मौसम आधारित जानकारी और जा जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
0: तो साथियों अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना।

और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती, कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग। गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद उर्वरक की मात्रा, एरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैरीगोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं। मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं।

तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना, ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफा कारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका

है, तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन नॉर्मली, तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेगा, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं, दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है। दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किशन भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा, और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी, पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस। तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा के दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा 2-3 टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे, तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूं। 1 एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है, 43,560 लगभग, आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5,000 ही बच गए, और 750 से 1 किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है, मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया 1 एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है, 10 रुपया भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया, उगवा लिया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो

पीला वाला भी करो, तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा। कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो। जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़ यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो। अल्टरमीडिया ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप एक एकड़ में 1 बैग DAP 1 बैग पोटाश पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP 1 बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो कि जब आप डाली फूटान की अवस्था में हो तो आप फास्टर ले लो कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटान का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो 1 माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो। जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसके बाद वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0-34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है फर्टिलाइजर वगैरह में, कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले DAP डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटास डाल दो तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। 2 वेराइटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है, 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1 आधा भी टन 30-40 रुपये किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50-60 हजार प्रति एकड़ 2-3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल कुछ पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी इल्ली की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है, जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो, या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45-60 दिनों में हो जाएगी, प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है तो वहां इल्लियां ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ पे इल्लियां ज्यादा है तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लियां आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाता है।

आते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसियस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6,000 से 7,000 पौधे लगाना है, इसमें 10,000 पौधे लगाना है, और देसी वाला गलगोटा कर देना, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8 से 10,000 पौधे लगाए हैं तो आपका 4 टन भी 5 टन भी प्रोडक्शन आ गया, और 10 रुपये भी रेट आ गया तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है जिसको रूट एक्जुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको एवॉइडेंस बोलते हैं, कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है, कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के 1, 2 या 3 पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको 2 वेराइटी पसंद करनी है और 3 या 4 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको, जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये/किलो बेचा था और 120 रुपये/किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हज़ार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बगैर ऐसा करें कि आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये/किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कि जैसे हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि खास करके पोमोग्रेनेट यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान हैं, जो ऐसा लगाते हैं 2-2, 3-3 प्लांट लगाते हैं 2 साइड में, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो गोल लाइन में, हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, तो आपको मानसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल या तो मई में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है, तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो, लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं, आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा

टन 4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हजार रुपया लिया है कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किशन भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यावसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। तो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नौ ने मड़ के नौ दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरो सुनो डरो लिलार के बेंदा लेदे लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत, अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया हरदयाल वर्मा जी। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनते हैं अगले साथी की गाय भाई लांगुरिया को। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, देखी शिव की अजब बारात गांव की भग्गा लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ई लांगुरिया को, आनंद लाओ है ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया चतुर्भुज जी। सो दोस्तों अब चतुर्भुज भैया जी की लांगुरिया के बाद आओ सुनते हैं अगले साथी की गाई भाई लांगुरिया को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, मोरी मैया के दरबार छमाछम नाचे लांगुरिया। अब दोस्तों इनके गीत के बाद फिर से अपन सुनते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को।

मोरी चुनरी भईरे भदरंग लांगुरिया लादे चुनरिया जयपुर की। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया गीत अपन सब जन ने सुनो है, ई को आनंद लो है। आप दोस्तों ई लांगुरिया गीत को गा रहे थे भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी। सो दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गया है। सो दोस्तों हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे। सो जब तक के लाने नमस्कार।

दलन से भवत दलन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी भवत दलन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव

0: गांवों में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

रहा है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती आलू खेती नष्ट है, नष्ट होने तो जो पैसा दे तेनालीर लाभ है, बाकी खेतियों को लोग लाभ तो पाने आम जन पाल
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्र पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केन्द्र सहित जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धीय तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 144 47 कॉल करक। फसल बीमा

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी गाय और कहीं ना एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कहना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जाए।

0: ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे भूल लगो, बताए कैसे यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना

ना, फिर उसने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब

अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। शुभ कल कार्यक्रम मित्रों हम अपने श्रोता साथियों के लिए 2008 से लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शुभ कल कार्यक्रम आने वाला कल किस तरीके से हो, और खास तौर पर शुभ कल कार्यक्रम में हम जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे बातचीत को हम लेकर आते हैं और चर्चा भी करते हैं। अब वास्तव में लग रहा है हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे श्रोताओं को कि वास्तव में ये जलवायु परिवर्तन ही है, क्योंकि बेमौसम बारिश, कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, कहीं सूखा पड़ना तो कहीं अत्यधिक बारिश होना, कहीं बाढ़ आना तो कहीं बिल्कुल मिट्टी ही नहीं गीली होना। तो ये सारे मौसम चक्र का बदलना, हवाओं का बदलना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो जलवायु परिवर्तन से होती हैं। एक बार फिर से पुनः हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम जलवायु परिवर्तन का एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, क्यों बदलना है, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग जलवायु परिवर्तन की जब बात आती है तो बात आती है हमारी खेती किसानी से जुड़ी बातचीत आती है। तो खेती में किस तरीके से हम रासायनिक पद्धति से जो हम खेती अपनी करते हैं उसको ना करके हम अपनी जैविक पद्धति से खेती किस तरीके से कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद बनाकर किस तरीके से हम लोग अपनी खेती में अपने बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से हम केचुआ खाद बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से रासायनिक खादों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम में पूरा मिश्रण होगा। जलवायु परिवर्तन जानेंगे, क्यों लोग कंपोस्ट खाद बनाना पसंद नहीं करते, क्या कारण है, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि क्या है, बैरू भौजी को भी सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं, हमारे एक रिपोर्ट हमने बनाई है तो उस रिपोर्ट को हम सुन लेते हैं, बुन लेते हैं, और इसके बाद हम आपको एक कंपोस्ट खाद बनाने की विधि चर्चा क्यों नहीं करते हैं, इस पर तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारी सी रिपोर्ट को।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है, दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं, समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है, कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं, करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है? जलवायु

परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है, ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यह है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, वो तो बहुत जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी, और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी, और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी CO2 पैदा हुई है, उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1°C बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5°C का बदलाव हो सकता है, और अगर ये बदलाव 2°C का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुँच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलस्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5°C पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा। लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है, वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजें खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंकिए मत, खराब हो जाएं तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाइए।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने इस रिपोर्ट को सुना और समझा कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा, किन किन कारणों से हो रहा, इस तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों सुनी। अब बात आती है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, क्या कारण है लोग नहीं बनाते हैं, क्या कारण है कंपोस्ट डालने से अपने खेतों में हिचकिचाते हैं हमारे किसान साथी, ये तमाम प्रकार की बातों को हम सुनेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बातें। और इसके बाद सुनेंगे साथियों भैरव भौजी को।

0: कितने कलगा उठवा तो जाओ कलुगा ओए कलुगा जाने कितने कितने चलो यार भुनसारी से मेरे इतना तसला भर के रख ला है वो मैंने अब जाने कितने निकलेगा कन्वीस रो अब मैं की खोटी रो
1: अरे भाजी काय को चिल्ला रही का बात है
0: का क्या रे लाला जू का बजा रही तुम्हें तो राम दी चार आंखें लग गई देख तो मैं गोबर को तो दसला उठ बैठाड़ी और कह रहे का बजा रही
1: अरे भौजी जा कह रहे काय को चिल्ला रही
0: अरे लाला जू तुम्हें भगया और राम दी मौका पे आ गए मैं नेट जो तसला उठवा दूं तो कल को जाने कितने निकलेगा भुनसारी से भाई देखा तो मैं बाप हो तो
1: अरे भौजी तू तसला उठवाने
0: अरे हाउ लाला जू ये हमने कही नहीं है तुम सही मौका पे आ गए को लगा दू हाथ ने काकोती में डाल रहा हूँ बुलाद भरो एक तसला और निकले जब भैंस काकोती अब मैं कहा बताऊ लाला जू अपनी बेथा
1: हाँ तो भौजी ते ऐसी कैसी बात कर रही मैं तो उठवा दी थी ले
0: उठवा लेकिन लाला जी तुम निकल आए देखो मुझे तो बड़ी चलो ठीक रहो मैं न दे आ रही थी जबकि तुम आ गए मुझे बड़ो अच्छो लगो कि कम से कम उठ तो लाओ मेरे
1: अच्छा भौजी एक बात तो है बता कि तू घूरो तो दिखा तू नहीं है
0: अरे लाला जी वजन वजन लग रहा हूँ मैं बोल तो पा नहीं रही होंगी मैं आ रही होंगी सो बता रही
1: हाँ
0: और लाला जी मैं एक काम और कर दो अब आ गए होंगे तो काको दिन को तो मेरी भैंस बंदी हैगी बाको में सानी करके रखे ही बस सानी रख दो तुमने तो बकिया सीट
1: लगे सुनो कर दो अलग में
0: कहा कह रहे लाला जी रखे दे तारी लाला जी तुमने तो ये नो नहीं कही रख दो
1: देख लो भैया ऐसे करवा जाता अपने काम
0: कहा कह रहे लाला जी
1: अरे कछु नहीं भाई जा कह रहा हूँ रखे देते रखे दे
0: हाँ हाँ तो ठीक है लाला जू ओ लाला जू अब देख लो लाला जू आप सुभी तरह घुस गए होते जो नहीं मैंने कही थी सानी देख लो मैं पहले हाँ सानी तो रख दी चलो ठीक है लाला जू
1: हाँ भाजी कहाँ है बता
0: अरे लाला जू कहाँ घुस गए कलुगा है वो होते
1: अरे नहीं है वो अभी हाथों तो खेल में कलगा भूर भूर सीते कछु समझाते नहीं है
0: बापों में देखा थोंगी आज बहुत खेला खेल ही खेल चढ़ो को 24 घंटा पढ़ाई के लाने नहीं सुनस रुक जाओ मैं देखा लाला जू धर रही थी भैंस को सानी
2: अब भाजी धर तो दई थी खा ले बाने
0: इतने जल्दी खा ली कि मैं गोबर डाल के नहीं आ पाई
1: अब तो भाजी तेना को तेना डाल दे तो
0: हाँ जा कहो कि मैंने डाल ही नहीं है तुम पक्के काम चोर होंगे
1: अरे भौजी ते तो ऐसी बातें कर मुझे डर भी उनका बने खा ली पूरी जब मैं कह तो रहा
0: चलो ठीक है अब कह रहे तो करे लेते में विश्वास हाउ लाला जी तुम कछु पूछ रहे थे बताओ क्या पूछ रहे थे
1: भौजी बात जाए कि मैंने कुछ करते ही घूरे ना हो तो त्यो घूरो दिखाते नहीं है तेना के मन डरो मैंने जासूची को उठा ली थी भौजी को गोबर कहे के डेली दिन तो डर क्या होते तो जात कहा है जा पूछने थी मुझे
0: कहा क्या है लाला जी मेरे गोबर भरा थे गो को बताओ को भरा थे गो वैसे मैं तो बहुत कम डारा थूंगी ये डाल दो तो हैगी
1: तो फिर तू घूरो का नहीं दिखा मैं तो जा पूछ रहा
0: अरे लाला जी पहले तुम जो बताओ मैं भरत कु है तुमने अभी हल कही
1: अरे भौजी जा मैंने कितने कही कि कू भरत है मैं तो जा कह रहा हूँ कि कम दिखा तुम्हारा घूरो
0: अरे लाला जी कम वो जा से दिखा के मैं गोबर नहीं कही तो डायरेक्ट मैंने कही नहीं है कि मैं एक आध पेरा डारत होते और पूरे की मैं खाद बना ली थी
1: खाद बना ली
0: हाओ
1: कैसी खाद
0: ले ओ लाला जी तुम्हें पता नहीं है
1: अरे मैं कहते जाना अगर जाना तो कहा पूछते
0: राम भाई लाला जू ये नहीं उमदा खाद बनन लगी
1: अच्छा गोबर की बनन लगी
0: हाओ ये मैं गोबर जाना नहीं लगा मैं एक भैंस है भाई से इतना अच्छो खाद बन जाती कि मैंने को ना सो रासायनिक बालो को लाओ राम भाई
1: वो तो सो घूरे पे डाल रहा करे सो बन जाओ वो तो खाद
0: अरे लाला जू बा में उतने फायदा नहीं रख जितने की बर्मी कम्पोस्ट में केचुआ खाद में रह उठेगी
1: बर्मी कंपोस्ट
0: अरे लाला जी बर्मी कंपोस्ट नहीं बर्मी कंपोस्ट जाको केचुआ खाद का तो बर्मी वो इंग्लिश को हुए वो सब मोड़ी मोड़ा कह रहा है मैं तो केचुआ खाद हैगी वहाँ केचुआ खाद बना लू मैं गोबर ज्यादा नहीं लगा फिर भी मैं तो ब्लड डाल देता हूँ का एक भैंस हैगी कितने निकला थी एक भैंस को
1: अच्छा जाके खाद बन जाता
0: हाओ
1: तो मैं केचुआ रहते
0: अरे लाला जी केचुआ मोल लेने पर ज्यादा नहीं अपन कितने बना रहे अब मैं ऐसे कैसा बता दूं तुम्हें मैं ये कहा ना फिर विधि तो बताऊंगी कि अपन ई में केचुआ छोड़ दे तो वे काकोती हंगत हेंगे तो उन्हें से काकोती फिर वहाँ खाद बन जा तुम तो जाना थोंगे कि केचुआ अपने किसान में उठेंगे
1: जा तो मैंने पढ़ी थी दो की किताब में कहानियाँ केचुआ होते अपने किसान के

0: अरे भौजी अब जा बता तो मी थे तो कहते तने कही गोबर तो फिर का मैं कैसे बनाऊं।
1: अरे लाला जी मैंने कही जहाँ मैं गोबर जाना नहीं लगा मैं गोबर डाल दो और जो भैंसन को वो निकल रहा हूँ अपनो रो रहा पतोरो वो भाई मैं ढारा जाओ और मैं कैसा छोड़ दो तो अपनो जो 30 दिन में बन के तैयार हो जाऊ थे 30-40 दिन में तो ऐसी खाद उमदा बन जाओ ऐसी खाद बन जाओ लाला जी खेत तो ऐसे लहलाए कि का बताए।
0: तो ई खाद को अपन कर का खा सकत काय काय में डाल सकत।
1: अरे लाला जी आप सब्जी लगाए हो तो सब्जी में डाल दो और खेती में हो तो खेती में डाल दो चाहे कछु में डालो ई खाद को
0: तो बड़ी नोनी उमदा सी खा देगी जा।
1: तो फिर लाला जी आसो तो जरूर ही बना जू।
0: अब वो जी तो फिर मैं अपनी एक गज्जा को गोबर अब खाद ही बनाऊ कर है।
1: हाँ तो फिर मैं और काम कर लो अपनो
2: साथियों। अभी आपने सुना बैरू भौजी को जिन्होंने हमें कंपोस्ट खाद के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। साथियों उसी तरह बुंदेलखंड के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में लागत खूब लगाते हैं लेकिन पैदावार नहीं होती है जिस कारण से आज भी किसान के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है और लाखों किसान डिफाल्टर हैं। तो आइए चलते हैं कुछ किसान साथियों के पास और पूछते हैं उन किसानों से कि वो कंपोस्ट खाद से अपनी खेती क्यों नहीं करना चाहते।
3: सबसे पहले आप अपना नाम बता दो।
4: हमारा नाम है वृंदावन पाल।
3: वृंदावन पाल कहाँ से?
4: राधापुर से।
3: अच्छा वृंदावन जी हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आप जानते हैं जानकारी है?
4: नहीं हमारे लिए नहीं है।
3: अच्छा आपको यह इस तरह की जानकारी अगर उपलब्ध कराई जाएगी तो आप सुनेंगे उसको?
4: सुन लेंगे। हमारा नाम है रविशंकर दुबे।
3: अच्छा रविशंकर जी एक चीज जानना चाह रहे हैं जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आपको जानकारी है?
4: नहीं
3: नहीं जानकारी है।
4: नहीं।
3: रेडियो पर आप सुनना चाहेंगे इस तरीके की जानकारी आप?
4: हाँ हाँ।

0: राकेश बंसाल, ग्राम जीवा जिला निवाड़ी।
1: कि कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानते हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है?
0: ना सर, ये तो मेरा नाम पहली बार सुना है।
1: अच्छा,
0: तो
1: आपको जानकारी नहीं है?
0: हाँ सर।
1: जैविक खाद के बारे में?
0: ना सर, ना उसका भी पता नहीं है सर।
1: अच्छा, आप जानकारी चाहते हैं?
0: हाँ चाहते हैं सर, तुम चाहते हैं?

0: हमारा नाम लालाराम यादव, निवाड़ी से।
1: अच्छा लालाराम जी, हमारा एक सवाल है कि आप कंपोस्ट खाद के बारे में क्या जानते हैं?
0: कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानना चाहते तो हम बताना चाहते हैं, कंपोस्ट खाद वह खाद है जिससे तो न किसी प्रकार की आदमी को नुकसान होता है, न फसलों को नुकसान होता है, न जमीन की उर्वरक शक्ति घटती है और बढ़ती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा और आज हम बात करने वाले हैं कंपोस्ट के बारे में। जी हां श्रोताओं, कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थ जैसे पत्तियां, बचा हुआ खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इसका विघटन हो जाए। हमारी पारंपरिक खेती में कचरा, गोबर, जानवरों का मलमूत्र व अन्य वनस्पति जन कचरे को एकत्रित करके खाद बनाने की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा मिट्टी में जैविक पदार्थों का विघटन करने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होते थे। इस प्रकार जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का विकास होता था एवं मिट्टी अधिक समय तक अच्छी फसल देने में सक्षम रहती थी। खाद बनाने का कच्चा माल सभी किसानों के खेत में ही उपलब्ध होने के कारण उसे बनाने में विशेष खर्च नहीं होता था। जैविक खाद फसल और मिट्टी दोनों के लिए लाभकारी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।

0: बाय बाय।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और अभी आपने इस चर्चाओं को सुना, लोगों के विचारों को जाना, खासतौर पर हमारे भैरव भाव जी ने भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से श्रोता साथियों को समझाया है। कंपोस्ट खाद के बारे में जानकारी दी इस कार्यक्रम के माध्यम से, और तमाम प्रकार के हमारे साथियों से उनके विचारों को सुना, जाना, समझा। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे। तो आने वाली फसल, चूंकि इस बार पानी खूब दम से बरसोएगो, तो हमारे किसान साथी आगे की फसलन की तैयारी अच्छी से हुई हैगी, अच्छी पैदावार हुई हैगी, पानी की समस्या नहीं आया है। लेकिन अब पानी की समस्या खत्म भई तो हमें दूसरी समस्या का आता है कि मिट्टी की जांच करावो, संगे संगे उनको मिट्टी के संगे संगे नए बीजन को उपचार करवो, कौन से तत्व की कमी है, ये तमाम प्रकार की चीजें। और खासतौर पर कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को अगर आपने जान लो, समझ लो, सोच लो, तो हम लोग कंपोस्ट खाद बनाकर अपने खेतन में डाल सकते हैंगे, और जहाँ से अपनी उपजाऊ शक्ति जो नष्ट हो चली जा रही है वह तनक ठीक ठाक हो जाएगी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी इससे सहमत होंगे। अगर नहीं है तो हमें जो भी बता सकते हैं कि काय नहीं है सहमत। अगर सहमत है तो हमें कार्यक्रम के बारे में जरूर फीडबैक दें। हमारे नंबर पर नंबर हमें 92-19-20-77-49, और साथियों हमारा पत्र है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम शुभ कल से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुशहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है।
1: पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है।
0: बिल्कुल श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी श्रोता साथियों का। श्रोताओं हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम हम होंगे कामयाब।
1: और मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में युवा साथियों के लिए हम युवा रोजगार सूचनाएं, युवा उद्यमी योजना, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम अपने साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं और बताते चले आ रहे हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि आने वाला कल हमारे युवा साथी ही हैं, तो उनके बेहतर भविष्य के लिए हम और क्या क्या चीजें दे सकते हैं, क्या क्या मोटिवेशनल जो स्टोरियां होती है, सक्सेस स्टोरियां होती है, वो हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं, ताकि उनको सुनने के बाद आपके मन में भी वो जिज्ञासा पैदा हो, आप भी सोचे कि काश हम भी ये करें।
1: सही कहा वर्षा, क्योंकि जब तक हम किसी के पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, जब तक किसी के मार्गदर्शन पर नहीं चलेंगे, जब तक हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। क्योंकि कहा जाता है कि कोई चलता, जैसे कि हमने बताया था, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। ऐसे ही हमारे एक युवा साथी जो स्वयं चलकर हमारे स्टूडियो में आए हैं, जिनका नाम है बिमलेंद्र सिंह यादव उर्फ विष्णु यादव, जिन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद एक

0: लक्ष्य बनाया था कि हमें लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, यानी उन्होंने क्या उद्देश्य और उनका जो विजन था, उनका विजन जो था वो पढ़ाई के साथ साथ हमें अधिकारी बनने का था, लेकिन उन्होंने एक जॉब आर्मी की जरूर की। इसके बाद तब भी प्रयासरत रहे कि हमें आगे चलकर हमारा भविष्य और अच्छा उज्जवल बन सकता है। छोटी सी उम्र में उन्होंने कर दिखाया है कि किस तरीके से आगे बढ़ने, किस तरीके से लक्ष्य पाने में हम किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो मनीष जी, यहाँ पर हम एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र छोटी हो, बस हौसलों में वो उड़ान होनी चाहिए, हौसलों में वो बुलंदियां होनी चाहिए। और खास तौर पे हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। जिस तरह अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख देखी थी, उसी तरह हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, ना कि यहां वहां की बातों पे। क्योंकि कई बार होता है जब हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें हमारे आपके सबके जीवन में आती हैं और हम वो रुकावटें देखकर घबरा जाते हैं और हमारा मन वहीं हताश हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है हमारे लक्ष्य पर।
0: तो साथियों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अपने युवा साथी, यंग साथी बिमलेन सिंह और फिर विष्णु यादव से बात करते हैं और सबसे पहले उनको बधाई देना चाहते हैं कि आज वो लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं और वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, युवा साथियों के लिए क्या प्रेरणा वो दे रहे हैं, आइए इनकी बातचीत को हम सुनते हैं। बिमले जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में।
2: जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बुंदेलखंड रेडियो चैनल को, जिसने मुझे ये मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी फील करता हूं कि मुझे यहां पे आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला।
0: जी,
2: मेरा नाम बिमलेंद्र सिंह है, मैं ओरछा मध्य प्रदेश में रहता हूँ करेंटली, और मैं रहने वाला मौजन गाँव का हूँ जो की नैंगवा के पास में है।
0: जी,
2: और मेरे फादर आर्मी में, इंडियन आर्मी में 26 ईयर्स उन्होंने सर्व किया
0: जी,
2: जो कि नायक सुबेदार रैंक और उसके बाद क्लर्क थे वो, तो हेड क्लर्क के पद पर भी उन्होंने काफी समय अपना देश की सेवा की
0: जी,
2: और कुमाऊं रेजिमेंट में उन्होंने अपनी सेवा दी है
0: जी।
2: और मैं आपको, मैं भी पढ़ाई किया मैंने काफी सारे स्कूलों में, जैसे आर्मी स्कूल में, फिर आर्मी स्कूल जहां मेरे फादर का ट्रांसफर होता था वहां मैं उनके साथ जाता था
0: जी।
2: तो अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करने के बाद लास्ट में मेरे मदर की भी जॉब है, वो भी आंगनवाड़ी में वर्क करती हैं, तो अल्टीमेटली उनके जॉब की वजह से हमें फिर एक स्टेबल एक लोकेशन पे सेट होना था, तो हमने ओरछा डिसाइड किया और हम ओरछा में रहने लगे
0: जी।
2: तो ओरछा में आने के बाद यहाँ के माहौल जो है उसको मैंने देखा, समझा, नए दोस्त बनाए
0: जी।
2: और क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे तो ओरछा में आके बुंदेलखंडी जो हमारी भाषा है
0: जी,
2: तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया, उसको सीखा
0: जी,
2: और बोलना सुनना बहुत ही आनंद आता था
0: जी।
2: तो पढ़ाई की अलग अलग स्कूलों से, फिर 12th के बाद हर एक यूथ के अंदर होता है कि अब मुझे कुछ करना है।
0: बिल्कुल।
2: तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब होता है ना कि 12th के बाद अब मैं कब तक पापा से पैसे मांगूंगा, पिताजी पर कब तक डिपेंड रहूंगा।
0: बिल्कुल।
2: तो ऐसा मेरे अंदर भी था, तो उसके लिए फिर मैंने आफ्टर 12th मैं कोटा गया
0: जी,
2: वहां पे मैंने तैयारी की, तो किसी कारण वहां पे मैंने एनडी के लिए प्रिपेयर किया था जो कि नहीं हो पाया, तो वहां से मैं थोड़ा निराश हो गया अपने आप से
0: जी।
2: फिर वहां पे एक साल का कोर्स था, वापस आया मैं ओरछा, तो रिलेटिव्स आसपास रहने वाले पूछते थे, अच्छा आप कोटा गए थे
0: जी,
2: अरे आपने तो आर्मी स्कूल में पढ़ाई की, अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ताना टाइप का फील होता था, लेकिन वो ताना तो नहीं था, लेकिन उनका नजरिया ठीक था वो कहने का
0: जी।
2: लेकिन अब बीइंग अ यूथ ऑफ अबाउट 16 to 18 years old, तो मुझे वो फील होता था कि मुझे ताना टाइप का ही फील होता था। अभी अगर मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वो सब एक बहुत ही अच्छी बातें नजर आती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो मुझे बस चिंगारी थी कि कुछ करना है, कुछ तो कुछ भी मिल जाए बस लाइफ में, एक स्टेप एक सीढ़ी मिल जाए मुझे
0: जी।
2: तो फिर जैसे कि मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे
0: जी,
2: तो मुझे काफी हद तक अनुभव था और जो फौज का वातावरण है उससे मैं काफी रूबरू था, तो मुझे वो फील्ड बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक जो जॉब है हमारी और प्रोफेशन लाइफ को एक नए तरीके से जीने का मौका मिलता है, मुझे बहुत जिज्ञासा थी
0: जी।
2: तो मैंने सोचा कि फौज में ऑफिसर बनने की कोशिश तो मैं कर ही रहा था, नहीं कर पाया, लेकिन फौज में ऑफिसर इस तरह नहीं बन पाया
0: जी।
2: तो एक जवान से भर्ती होते हैं तब फिर बन के देखते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं भर्ती की तैयारी की, दौड़ना शुरू किया और दौड़ की तैयारी की, मेडिकल वगैरह ये सारी चीजें आगे होनी है तो उसकी भी तैयारी की। तो जब मैंने दौड़ की तैयारी की, दौड़ने के बाद मेरी जो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर है रानीखेत में, वहां पे मेरी दौड़ क्लियर हो गई
0: जी।
2: उसके बाद मेडिकल होता है, तो मेडिकल के लिए

0: मेडिकली फिट था, लेकिन किस्मत का कहेंगे दुर्भाग्य कह लो या किस्मत का खेल कह लो,
1: जी
0: तो उस समय जब मेरा मेडिकल था उससे कुछ ही दिन पहले मेरा अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है, तो
1: जी जी जी
0: अपेंडिक्स का दर्द हुआ तो वो फिर ऑपरेशन करवाना पड़ गया अर्जेंटली,
1: जी
0: तो फिर मैं मेडिकली अनफिट हो गया। तो दोबारा से निराशा मुझे हुई अपने आप से काफ़ी, मतलब मुझे उम्मीद थी कि अब तो फिजिकल हो गया है और अब मेडिकल भी हो ही जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो फिर कहीं ना कहीं फिर से खुद को मजबूत किया,
1: जी
0: रिकवर किया,
1: जी
0: और डॉक्टर्स बताते हैं कि पेट के बाहर के टांके तो सूख जाते हैं लेकिन अंदर
1: जी
0: के टांके रिकवर करने में टाइम लगता है।
1: टाइम लगता है बिल्कुल
0: तो जब 6-7 महीने बाद मैंने दोबारा रनिंग की तो दौड़ने के बाद फील हुआ कि अरे ये तो सब खराब हो गया,
1: जी
0: पहले मेरी रनिंग इतनी अच्छी थी, फिजिकल इतना अच्छा था।
1: जी
0: तो काफ़ी ज़्यादा मुझे, मतलब शुरू के 2-3 दिन तो बहुत दुख हुआ कि अरे अब कैसे होगा,
1: बिल्कुल
0: और 4-5 महीने बाद दोबारा भर्ती आ रही है, कैसे करूँगा। तो फिर भी मनोबल बनाया, खुद को मानसिक तरीके से स्ट्रांग किया, दौड़ना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 2 या 2.5 महीने में वापस मेरा वो फ्लो पहले वाला आ गया था।
1: जी
0: फिर मैं भर्ती में गया, दौड़ा, फिजिकल फिट, मेडिकल फिट। रिटन में 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही ईजी होता है, अगर आप
1: बिल्कुल
0: तैयारी करेंगे तो वो ईजी होते हैं,
1: जी
0: तैयारी नहीं है तो फिर हर चीज़ मुश्किल हो जाती है।
1: जी
0: तो आउट ऑफ 50 मैं 49 क्वेश्चन करके आया था, जो कि मैं प्रिटी श्योर था कि ये करेक्ट है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: मैंने तैयारी की थी।
1: बिल्कुल
0: तो एग्ज़ाम हो गया, फिर मेरी डेट ऑफ एनरोलमेंट थी नवंबर में 26, तो मैं भर्ती हो गया
1: बिल्कुल
0: और सेंटर में ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो सारे देखे, मतलब घर पे आराम से मखमल में सोते थे,
1: जी
0: फादर
1: जी
0: जो फादर मेरे आर्मी में थे, मम्मी
1: जी
0: जॉब करती थी,
1: जी
0: दीदी से मैं, उस समय समझदारी इतनी नहीं थी मेरे अंदर, तो दीदी का डर उतना था नहीं,
1: जी
0: मम्मी अब खुद की जॉब करती हैं या फिर मुझे समझाती हैं, तो मैं अपना मस्त रहता था। लेकिन
1: बिल्कुल
0: जब ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और वहाँ जब उस्तादों ने डांटा और
1: जी
0: सीनियर्स ने डांटा, ट्रेनिंग होती थी रफ एंड टफ ट्रेनिंग होती थी, तो शुरू के
1: जी
0: 1 हफ्ते तो लगा कि घर वापस आ जाता हूँ।
1: जी जी जी
0: सच में मेरे दिल से आवाज़ आई कि घर
1: बिल्कुल
0: वापस चले यार, कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे,
1: हाँ
0: और मतलब और भी सारे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर मैंने मुड़ के देखा कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, साथी हैं, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
1: जी
0: तो फिर खुद को मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से मजबूत बनाया, और फिर दस
1: जी
0: पंद्रह दिन बाद क्या होता है कि हम ढल जाते हैं उस माहौल में।
1: बिल्कुल
0: तो वो चीज़ हो गई, ट्रेनिंग चलती रही। ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे ट्रेनिंग
1: जी
0: सेंटर में, डिबेट कॉम्पिटिशन
1: जी
0: और फायरिंग कॉम्पिटिशन, तो उन सब में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मतलब फिर जिज्ञासा होने लगी कि मुझे अब ये सीखना है, आ
1: बिल्कुल
0: तो गई है, या तो रो धो के करो या तो मुस्कुरा के करो, तो
1: बिल्कुल
0: क्यों ना
1: बिल्कुल
0: मुस्कुरा के ही करते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: इंटरेस्ट लिया, सीखा, और एक डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें मैं फर्स्ट आया था।
1: जी
0: तो उस डिबेट कॉम्पिटिशन का टॉपिक भी ये था कि क्या आज की युवा सेना की तरफ आकर्षित है या नहीं है।
1: हाँ
0: तो मेरे साथ वाले जो थे उन्होंने कहा कि हम है पे बोलेंगे, तो
1: बिल्कुल
0: मैंने कहा अब मुझे नहीं है पे बोलना पड़ेगा। तो
1: हाँ
0: फिर मैंने कहा आप क्या करेंगे करके, फिर 1-2 दिन मैंने स्क्रिप्ट तैयार की, अच्छे अच्छे पॉइंट्स काफ़ी तैयार किए, और एट लास्ट उसमें मैं फर्स्ट आया और ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मुझे मौका मिला अपनी भारतीय सेना को रिप्रेजेंट करने का, कुमाऊँ रेजिमेंट को
1: बहुत
0: रिप्रेजेंट
1: बढ़िया
0: करने का
1: जी
0: राजपथ पर। तो
1: बिल्कुल
0: राजपथ पर 26 जनवरी की परेड मैंने 2020 में राजपथ पर चला। मैं मुझे अब तक की सो फार मेरी सेकंड मोस्ट हाईएस्ट अचीवमेंट है कि मैं राजपथ पर अपने देश को मैंने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम
1: बहुत
0: सभी जानते
1: बढ़िया
0: हैं राजपथ पर जो परेड होती है वो अपने भारत देश में नहीं विदेशों में भी दिखाई
1: बिल्कुल
0: जाती है,
1: दिखाई जाती बिल्कुल
0: तो वो एक
1: गौरव
0: बहुत ही
1: गौरव का विषय
0: गौरवशाली
1: बिल्कुल
0: समय था मेरे लिए।
1: जी
0: बहुत मज़ा आया, जब तक कंडीशन की प्रैक्टिस चलती थी दुख हुआ, तकलीफ हुई, पैर दर्द, थकान, लेकिन जिस दिन राजपथ पर चले सारी थकान, कहते हैं ना पैसा वसूल, तो मेहनत
1: बिल्कुल
0: वसूल हो गई उस दिन मेरी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे फादर आए थे मुझे राजपथ पर चलता देख, वो बहुत खुश हुए।
1: जी
0: फिर मैं वापस अपनी यूनिट में आया,
1: जी
0: तो यूनिट में आने के बाद क्या होता है, जिसको जैसी कैपेबिलिटीज होती हैं उसको वैसा काम मिल जाता है। तो मुझे
1: बिल्कुल
0: थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज था,
1: जी जी जी
0: तो यूनिट में आके कंप्यूटर सेल होता है, कई जगह IT सेल बोलते हैं उसको,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: उसमें गया। वहाँ पे मैंने, मतलब हम लोग जो घर पे कंप्यूटर चलाते हैं और जो फौज में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल अलग है। घर
1: जी
0: पे हम गेम्स खेलते हैं, PC फॉर्मेट कर दिया, वीडियो एडिटिंग करते हैं, लेकिन फौज में काफ़ी सारे नए काम होते हैं, तो वो सारे मैंने सीखे मेरे
1: जी
0: सीनियर्स से, तो उनसे मैंने सीखा। लेकिन सीखता मैं जा रहा था, जो मेरे सामने आ रहा है
1: जी
0: वो सब में मैं अपना लेवल बेस्ट देता जा रहा था,
1: बहुत बढ़िया
0: लेकिन मेरा मेन उद्देश्य था कि मेरा एम, मैं किस लिए भर्ती हुआ था, टू बी एन ऑफिसर, मुझे बनना
1: बिल्कुल
0: तो ऑफिसर ही
1: ऑफिसर
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो फिर मैं वेट करता रहा, एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, क्लर्क पार्टी बैठती है, मतलब क्लर्क सर
1: जी
0: लोग बैठते हैं,
1: जी
0: तो उनसे मैं पता करता रहता था कि सर अभी तो फॉर्म नहीं आए, अभी तो फॉर्म नहीं आए।
1: बिल्कुल
0: तो मेरे अंदर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फॉर्म निकल जाए और मैं फिल ना कर पाऊँ,
1: फील
0: फिर
1: ना
0: मुझे
1: कर
0: छः
1: पाऊँ
0: महीने वेट करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: तो जैसे ही मुझे पता चला कि फॉर्म आया हुआ है, तो मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया, और मेरे सीनियर्स बोलते थे कि अरे तेरे को ऑफिसर बनना था तो सिविल से बन के आता। तो मैं
1: बिल्कुल
0: नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि उन सीनियर्स ने मुझसे इस तरह की

0: आती है कहीं,
1: बहुत
0: क्योंकि
1: बढ़िया,
0: उनका बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: चीजें, बहुत ज्यादा आपको मतलब एक जिद होती है ना कि अच्छा इन्होंने ऐसा कहा अब तो मुझे
1: बिल्कुल,
0: करके दिखाना
1: करके
0: है।
1: दिखाना है बिल्कुल।
0: तो फिर फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिल किया, फिर रिटर्न के लिए तैयारी की, और जो हमारा जो सेक्शन था, जो मेरा डिपार्टमेंट था, उसमें हमारे काफी सारे सीनियर्स ने वो ऑफिसर के लिए ट्राई किया हुआ था,
1: बिल्कुल
0: तो किसी कारण वो उनका नहीं हो पाया था। तो मैं उनसे पूछता था कि सर आपका क्यों नहीं हो पाया,
1: जी
0: आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या कमी थी। मैं उनकी करी हुई मिस्टेक से एनालिसिस करके सीखता रहा
1: बहुत बढ़िया
0: कि क्या कमी रही होगी, कहीं मुझ में तो ये कमी नहीं है, इम्प्रूव
1: जी
0: कर लेता हूँ यार, मेरे पास तो
1: बिल्कुल
0: अभी टाइम है। तो फिर जो मुझे अपने अंदर वीकनेस फील हुई उनको मैंने इम्प्रूव किया
1: जी
0: और सीखता रहा, मतलब जैसे कुक उस्ताद होते हैं फौज में।
1: बिल्कुल
0: तो कई लोगों को गलत फहमी होती है कि अच्छा फौज में ट्रेडमैन है, तो कई लोग उसको अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन जो आपको खाना खिला रहा है वो सबसे बड़ा धर्म होता है।
1: बिल्कुल
0: और
1: होता
0: जो
1: है
0: कुक उस्ताद होते हैं, जो फौजी इंसान होता है, वो जानता है कुक उस्ताद की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो खैर सिविल में उनको पता नहीं होता है फौज के बारे में ज़्यादा, तो
1: जी
0: वो एक मिसकंसेप्शन होता है उनके दिमाग में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो उनसे भी मैं सीखता था, कभी वो चिकन काट रहे हैं तो मैं सर मेरे को बताओ ना कैसे होता है,
1: बहुत बढ़िया
0: कभी वो
1: बहुत
0: मतलब वेज
1: बढ़िया
0: नॉन वेज दोनों खाना होता है ना।
1: जी जी जी
0: तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैंने कहा आना तो चाहिए यार,
1: बिल्कुल आना चाहिए सारी चीजें हैं।
0: तो वो भी मैंने उनसे सीखा, मैंने कैसे होता है मुझे बताओ आप एक बार। तो एक
1: बहुत
0: बार वो भी
1: बढ़िया
0: सीखा, फिर घातक वाले सर लोग होते हैं उनसे सीखा कि सर घातक में आप लोग को इतना डिफरेंट नज़रिए से क्यों देखते हैं, क्या
1: बहुत
0: होता है।
1: बढ़िया
0: फिर उन्होंने बताया ये होता है, हम लोग हैरी जो स्लिदरिंग होता है
1: जी
0: तो वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी। मतलब मैं शुरू से क्यूरियस था किसी भी चीज़ को जानने के लिए,
1: जानने
0: सीखने
1: के
0: के लिए।
1: लिए
0: और अगर आप क्यूरियस हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है, तो आप उसके बारे में जानेंगे, पता करेंगे। अगर आपके अंदर
1: बिल्कुल
0: जिज्ञासा ही नहीं है, तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें।
1: जी
0: फिर क्या हुआ कि मेरा रिटन क्लियर हो गया,
1: जी
0: तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा चलो रिटन क्लियर हो
1: रिटर्न
0: गया।
1: क्लियर हो गया
0: अब मेरे पास बचे थे अगले 6 महीने मेरे SSB की तैयारी करने के लिए।
1: जी
0: ऐसा कहा जाता है कि SSB एशिया का टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है। मतलब मुझे SSB के अलावा ऐसा कोई एग्जाम ऐसा नहीं दिखा अब तक, तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, जिसमें 5 दिन आपका इंटरव्यू लेते हैं।
1: बहुत बढ़िया 5 दिन
0: और ऑलमोस्ट SSB में कहते हैं कि सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है और बहुत कम रिकमेंड होते हैं, और कहते हैं कि हर IAS PCS सॉरी कहते हैं कि हर SSB क्लियर करने वाला IAS PCS बन सकता है,
1: जी
0: लेकिन हर IAS PCS SSB क्लियर नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम हो गए हमारे, अमिताभ बच्चन हो गए, कई सारी ऐसी हस्तियां जिन्होंने SSB दिया पर किसी कारण वो क्लियर नहीं कर पाए। तो ये बातें उनको बताई जाती हैं जो किसी कारण आउट हो
1: कारण
0: जाते हैं,
1: आउट हो जाते हैं
0: तो उनको मोटिवेट करने के लिए बातें बताई जाती हैं। और काफ़ी हद तक ये बात सही भी होती है, क्योंकि आप हो सकता है SSB में आप फिट नहीं हो रहे हो, लेकिन आप किसी दूसरी फील्ड में देश की सेवा अच्छे लेवल पर कर सकते हो।
1: बिल्कुल
0: तो SSB का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला अटैम्प्ट था, तो मैं चाहता नहीं था कि मुझे दूसरा अटैम्प्ट देना पड़े।
1: जी
0: तो मैंने बस अपने लेवल पे बेस्ट दिया। हमारे जो CO साहब हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा,
1: बहुत बढ़िया
0: और नाम किसी कारण मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता,
1: बिल्कुल वो तो फिर
0: तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे जब उन्होंने देखा कि हाँ ये बंदा कैपेबल है,
1: जी
0: इसके अंदर वो काबिलियत है, उन्होंने मुझे स्पेयर कर दिया था लास्ट के कुछ मंथ्स, ताकि मैं अपना प्रिपेयर कर पाऊँ। तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं आती थी, उसके पहले आती थी, तो पहले का सफ़र तो रिटर्न के लिए जैसे तैसे हो गया था।
1: जी
0: ड्यूटी पे कभी कभी नींद आ जाती थी, कभी कभी डांट पड़ गई, कभी कभी सज़ा लग गई। तो
1: बहुत बढ़िया
0: ये सब सिखलाई का तरीका होता है, और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, क्या मुझे ड्यूटी पे पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ना
1: नहीं
0: चाहिए था।
1: पढ़ना चाहिए
0: तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ड्यूटी पे पढ़ो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक सिखलाई का तरीका है, और आपको सिखाने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए ही सज़ाएं
1: बिल्कुल
0: बनाई हुई होती हैं, आपको फिजिकल स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए सज़ा बनाई होती है, जो कि फ़ौज का एक हिस्सा है, और जो हमेशा फ़ौज को एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने में हेल्प करता है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: विष्णु जी, यहाँ पर थोड़ा रोकेंगे और जानना चाहेंगे कि हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, वो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने फौज की तैयारी किस तरीके से और किस किस स्टेप से, जैसे आपने 12वीं के बाद पूरा लगन से और पूरी मेहनत के साथ आपने उस मुकाम को, आपने लक्ष्य जो बनाया था उस मुकाम को पहुंचने के लिए, आपने हासिल करने के लिए आपने मेहनत जी तोड़ मेहनत की, तो क्या क्या उसमें आपने पढ़ाई की और किस तरीके से आपने पढ़ाई की, कैसे?
0: फौज में जवान बनने के लिए क्या करना होता है, ये सारी चीज़ें आजकल ऑलमोस्ट फेसबुक पर सॉरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब और जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस होते हैं, इन सारी चीज़ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं।
1: जी
0: और जवान बनते कैसे हैं ये तो सबको पता होता है, लेकिन एक
1: जी
0: ऑफिसर के लिए क्या करना होता है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ऑफिसर के लिए क्या होता है कि 15 OLQs होते हैं,
1: जी
0: कहते हैं 15 OLQs होते हैं, जिनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है
1: जी
0: उन 5 दिनों में जो आप SSB देते हैं।
1: जी
0: तो वो 15 OLQs जिसके अंदर होते हैं, ऐसा कहते हैं कि 15 के 15 तो किसी के अंदर नहीं होते, लेकिन 12-13 भी अगर आपके अंदर हैं तो यू आर फिट टू बी एन ऑफिसर। तो वो टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, 5 दिन होता है एसएसबी का इंटरव्यू, 5ों दिन अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को उतने अच्छे तरीके से नहीं पहचानते हो जितने अच्छे तरीके से जो एसएसएस होते हैं वो आपको पहचान जाते हैं
1: जी।
0: तो वो एसएसएस को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह इनको सिलेक्ट करना है, किस तरह नहीं करना है, क्या गलतियां करते हैं, तो उनको भी वो हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेंड होते हैं तो उनकी नज़र से कोई नहीं बच सकता है,
1: बिल्कुल।
0: तो वो सिलेक्शन करते हैं। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए एक अच्छा गुरु होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: बिल्कुल।
0: तो एक गुरु का काम, आप अपने सराउंडिंग एक गुरु आपका एक आइडल आइडल हो गई होगा, तो मेरे लिए काफ़ी हद तक ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे फादर ने निभाई, उन्होंने लाइफ में जो जो किया है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके अंदर 15 के 15 OLQs थे, लेकिन काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी
1: बहुत बढ़िया
0: जो मैंने उनसे सीखी, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने देख कर सीखा कि नहीं ये वाली चीज़ मुझे अडॉप्ट नहीं करनी है।
1: बिल्कुल।
0: फॉर एग्जाम्पल, वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो मैंने कहा गुस्सा तो मैं नहीं करूँगा इनकी तरह,
1: बिल्कुल
0: है ना। और जैसे वो हार्ड वर्किंग है और
1: जी।
0: कंटिन्यूस मतलब कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, फ्री नहीं रहते हैं वो
1: जी।
0: अधिकतर, मतलब फ्री भी नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, या तो फिर प्लांट्स की गार्डनिंग कर लेंगे, या तो छोटे वो पौधे वगैरह लगा लेंगे, अपनी ड्रेस वगैरह मेंटेन कर लेंगे, एक बार गांव जाएंगे रिलेटिव से मिल के आएंगे। तो कहते हैं ना फौजी इंसान फ्री नहीं रहता, तो जो जिस इंसान ने 26 साल फ्री नहीं रहा तो अब वो उसको खुद को मजा नहीं आता कि मैं फ्री बैठा हूँ। तो मेरे फादर ने काफी हद तक मेरे लिए जो आइडल वाला है, जो एक कहते हैं कि किसी को हम मुझे एग्जैक्ट वर्ड अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, लेकिन हम किसी को अपना सिद्धांत, किसी की आइडिया, किसी की हॉबीज को, किसी की आदतों को सिद्धांत मानते हैं, तो वो काम मेरे लिए मेरे फादर ने किया।
1: जी।
0: तो तैयारी के लिए मैंने पता किया, एक कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी अमास करके, जो कि ग्रेटर नोएडा में है,
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझे एक फेयर आइडिया दिया कि एसएसबी में क्या होता है, कैसे होता है,
1: जी।
0: तो एक कोचिंग भी काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको आपकी फैमिली पसंद करती है, आपके फ्रेंड्स पसंद करते हैं, आपके रिलेटिव्स पसंद करते हैं, इसका मतलब आपको एसएसबी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा था, रिलेटिव्स काफ़ी अच्छे थे, और मुझे मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, मतलब
1: जी
0: मुझे गुस्सा नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है लड़ाई नहीं होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो गुस्सा करना एक अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि मेरे अंदर शुरू से ही नहीं थी, शुरू में आता था बचपन में, कहते हैं ना एडल्ट और मैच्योरिटी वाली एज, मतलब जो टीन एज होती है उस समय आता था, लेकिन जैसे जैसे होश संभाला तब पता चला कि आज मुड़ के देखता हूँ कि अरे मैं इतना बेवकूफ था, तो हंसी आती है। तो ये सब जीवन का हिस्सा होता है, सीखने के तरीके होते हैं। तो अभी एसएसबी मैंने दिया और क्लियर हो गया, और मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा
1: जी।
0: तो मेरे साथ जो बाकी मेरे साथ वाले थे, वो कोई सेकंड अटेम्प्ट वाला था, कोई थर्ड वाला था, मेरे साथ एक एयरफोर्स का भाई था, वो 8th अटेम्प्ट था उस भाई का, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था कि मैं अकेला हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, बाकी सब रिपीटर्स हैं, मतलब इन सबको तो काफ़ी पता है कि पहले से क्या होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिपीटर होना या फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होना कोई डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाओगे, नहीं है तो थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश के बाद आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में भी रिकमेंड हो सकते हो।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे विष्णु जी, यहाँ पर थोड़ा और रोकेंगे और हमारे साथी युवा साथी चूंकि बहुत सारे आपसे प्रेरणा भी ले रहे हो और जो भी हमारे साथी सुन रहे हो तो वो भी जानना चाहेंगे कि ये ऑफिसर्स की रैंक जो होती है उसकी उम्र मतलब समय सीमा क्या होती है और किस तरीके से वो डायरेक्टली सिलेक्ट होता है कि आर्मी भर्ती के बाद वो सिलेक्ट होता है।
0: ये क्वेश्चन मैं आपका बताने ही वाला था, आपने सही टाइम पे पूछ दिया
1: जी।
0: जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मुझे सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बधाई हो आप ऑफिसर बन गए, मतलब जवान से भर्ती हुए थे फिर ऑफिसर बन गए, तो सबने बधाई तो बहुत दी, कॉन्ग्रेचुलेट बहुत किया, फादर को भी मुझे भी, लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि ये होता कैसे।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे ये थोड़ा सा निराशाजनक लगा मुझे कि कोई पूछ ही नहीं रहा है कि होता कैसे, कैसे होगा,
1: बिल्कुल,
0: या फिर कैसे तैयारी होती है, मुझे भी थोड़ा सा गाइडेंस दो, क्या मेरी एलिजिबिलिटी है। तो ये रेडियो चैनल के, हमारे बुंदेलखंड रेडियो चैनल के माध्यम से ये मैं मैसेज सबको, मतलब किसी ने पूछा तो नहीं है, लेकिन तब भी
1: देना
0: दे देता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी सारे युवा ऐसे हैं जो जानना चाहते होंगे,
1: बिल्कुल जानना चाहते हैं।
0: हाँ, तो इस रेडियो चैनल के माध्यम से मैं सबको एक्सेस कर पाऊंगा अभी।
1: बिल्कुल।
0: तो टू बी एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेज आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हो
1: जी।
0: और 12th में आपका मैथ्स है तो वेल एंड गुड, अगर कॉमर्स या आर्ट्स भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको रिटन क्लियर करना होता है एनडीए का, और मैथ्स है नहीं है वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, बस आप मैथ्स होगी तो आप सम सॉल्व कर पाओगे, नहीं होगी मैथ्स तो आप साइड से कहीं से कोचिंग लेके भी वो क्लियर कर सकते हो। और 12th करते ही अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स हैं, 70+ आपके PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपके 70% प्लस आपके ग्रेड्स हैं, तो आप फिर एक TES एंट्री होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये दोनों मौके आपके छूट जाते हैं तो अगर आप NCC कर रहे हो तो एक NCC स्पेशल एंट्री होती है उसके थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो। अगर वो भी स्किप हो जाता है, वो अब तब भी नहीं कर पाए।

0: है तो फिर आप एक CDS एंट्री होती है
1: जी
0: उसके थ्रू आप जा सकते हो, वो भी नहीं हो पाया तो आप फौज में जैसे जिस तरह मैं भर्ती हुआ फौज में तो आप
1: जी
0: भर्ती हो सकते हो। उसके बाद अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ डिजर्व करते हो
1: जी
0: तो फिर आप ACC एक एंट्री होती है,
1: जी
0: तो वो सिर्फ स्पेशल फौजियों के लिए ही होती है
1: जी
0: जो
1: जी
0: फौजी बाकियों से थोड़े से ज़्यादा केपेबल होते हैं
1: जी
0: और जो डिजर्व करते हैं तो फिर उनके लिए एक एंट्री होती है। तो आप ACC
1: बिल्कुल
0: के थ्रू भी एक ऑफिसर बन सकते हो, कमीशन ले सकते हो। और ACC एंट्री से NDA एंट्री से NDA खड़कवासला जो कि पुणे में है वहाँ जाके ट्रेनिंग होती है,
1: बहुत
0: 3 साल
1: बढ़िया
0: ट्रेनिंग, 4थे साल फिर उनका मतलब ग्रेजुएशन भी उनकी वहीं पे होती है, 4 साल ऑलमोस्ट ट्रेनिंग हो जाती है।
1: जी जी जी
0: और ACC में भी इसी तरह का होता है, लेकिन ACC वाले कैंडिडेट्स IMA देहरादून जाते हैं
1: जी
0: और हमारा भी 4 साल का टेन्योर होता है। तो
1: जी
0: 4 साल बाद फिर पासिंग आउट परेड होती है, फिर ऑफिसर बन जाता है इंसान और उसकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट, और कुछ साल बाद फिर उसका प्रमोशन होता है एज अ कैप्टन, फिर मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। और जो कहते हैं जो जितने ज़्यादा कैपेबल होगा वो उतने ज़्यादा हायर रैंक्स तक जाता है।
1: जी
0: तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है देश को सर्व करने का।
1: बिल्कुल
0: और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको लाइफ जीनी है ना, क्योंकि लाइफ एक ही होती है,
1: जी जी जी
0: अब कहते हैं 7 जन्म होते हैं, अगली जन्म पता नहीं कौन सा मिलेगा क्या मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: आपको पता नहीं ना क्या मिलेगा, यही तो
1: जी
0: एक जन्म है। तो
1: जी
0: जो भी करना है अभी करना है,
1: जी
0: अपनी इस लाइफ को या तो एंजॉय कर लो
1: हाँ
0: या तो एक बार मेहनत कर लो तो जीवन भर एंजॉय करोगे, तसल्ली से बैठोगे खाओगे, या फिर अभी एंजॉय नहीं करो मतलब अभी आप दोस्तों में मस्ती करोगे या फिर कुछ करोगे, बदमाशियां करोगे, तो जीवन भर फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो
1: बिल्कुल
0: स्ट्रगल तो करना ही है, अब डिपेंड आप पे करता है, या तो आप 2 महीने करो या फिर
1: बिल्कुल
0: 1 साल करो या फिर जीवन भर करो।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मैं जीवन भर स्ट्रगल करना नहीं चाहता था, तो मैंने खाना स्किप कर दिया, ज़्यादा खाना खाऊंगा तो नींद आ जाएगी,
1: बिल्कुल
0: कम खाना
1: बिल्कुल
0: खाया।
1: बिल्कुल
0: सुबह ब्रेकफास्ट में चने भिगा के खा लेता था, मेरे फादर को फ़ोन आता था कि खाना खा लिया, मैं कहता हाँ नाश्ता हो गया हो गया,
1: बहुत बढ़िया
0: क्योंकि मैं सोचता था कौन कुक हाउस तक जाएगा
1: जी
0: खाना
1: जी
0: खा के
1: जी
0: आएगा, थोड़ा सा
1: बिल्कुल
0: दूर था कुक हाउस हमारा,
1: जी जी जी
0: तो मैं सोचता था टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह मैंने सोचा कि एक ही बार एग्जाम है, एक ही बार जान लगा देनी है,
1: बहुत बढ़िया
0: और अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी का जो मोमेंट है अपना लेवल बेस्ट देना है ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे कि मेरा हो जाता अगर मैं ये गलती ना करता।
1: जी
0: तो आप जब होश में रहोगे, आवाज में रहोगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आपको ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कि आपको दोबारा देना पड़े।
1: बहुत बढ़िया
0: तो मेरा एक ही मैसेज है मेरे सभी युवाओं के लिए कि आप लाइफ में जो भी करते हो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो मुझसे कई लोग कहते थे कि तेरे फादर JCOs थे, सूबेदार थे भैया,
1: जी
0: दो
1: जी
0: स्टार से तेरे पापा आए
1: जी
0: और तू अब फौज में जवान चला गया, जवान रैंक पे भर्ती हो गया। अरे भाई साहब मज़ा नहीं आया, आपके बेटा मतलब कुछ तो अच्छा करना था, आर्मी स्कूल में भी
1: बिल्कुल
0: पढ़ा, कहीं कहीं पढ़ा।
1: जी
0: तो आर्मी स्कूल मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथियों से मैं कहना चाहूँगा घबराए मत, मतलब आर्मी स्कूल ऐसा नहीं कि आर्मी स्कूल वाले ही क्लियर करते हैं।
1: जी
0: तो कई सारे मेरे साथ में जो मेरे अगले दिन जो मुझसे मेरे एक दिन बाद रिकमेंड हुआ वो हिंदी मीडियम से था, वो भी
1: बहुत
0: रिकमेंड
1: बढ़िया
0: हुआ है।
1: बहुत
0: तो
1: बढ़िया
0: स्कूल कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है आपकी लगन, आपकी मेहनत
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: आपकी किस तरह की आदतें हैं,
1: जी।
0: तो ये सारी चीज़ें एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं।
1: बस एक आखिरी सवाल है हमारा,
0: जी
1: चूंकि समय भी हो रहा है, अब धीरे धीरे हम जानना चाहेंगे कि ये जो ऑफिसर्स रैंक की जो भर्तियां निकलती हैं, वर्ष में कितनी बार निकलती हैं और कैसे इनका पता चलता है?
0: ये आप जो हमारे joinindianarmy.nic है या फिर UPSC की आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि
1: जी
0: UPSC ही एग्ज़ाम
1: एग्जाम
0: कंडक्ट
1: करवाता
0: करवाती
1: है
0: है,
1: बिल्कुल
0: तो आप वहाँ पर जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंटरनेट से आप कनेक्टेड रहेंगे, सर्च करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप पता ही नहीं करेंगे, बैठा रहेंगे, तो कोई पोस्टमैन घर पे आने वाला नहीं है कि
1: बिल्कुल
0: आपको बता दे कि भैया अप्लाई कर दो, फॉर्म आ गया है। रुचि आपकी होगी तो होगा, ये हर 6-6 महीने में होता है। आप NDA देखेंगे वो भी 6-6 महीने में होता है,
1: जी
0: CDS भी इसी तरह से होता है, ACC
1: जी
0: एंट्री भी इसी तरह से होती है। तो मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आप सबको बता पाऊँ कि
1: बहुत
0: जवान के
1: बढ़िया
0: बाद भी आप ऑफिसर बन सकते हो,
1: जी
0: और आपकी संगत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यूथ में क्या होता है, यंग एज होती है, संगत गलत हो जाती है तो हम
1: बिल्कुल
0: गलत दिशा में चले जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और दोस्तों का चयन, किस किन दोस्तों का चयन करना है, क्या वो दोस्त
1: जी
0: सही है,
1: बिल्कुल
0: दोस्त अगर आपसे ही मतलब रखता है तो वो आपका सच्चा दोस्त मैं नहीं कह सकता है कि नहीं है,
1: जी
0: लेकिन दोस्ती करनी है तो परिवार की दोस्ती करनी है,
1: बहुत बढ़िया
0: उसके भाई बहन, आपके भाई बहन, उसके माता पिता, आपके माता पिता,
1: बिल्कुल
0: तो जो
1: बिल्कुल
0: परिवार की दोस्ती होती है वही आपका सच्चा दोस्त होता है।
1: जी
0: तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है और
1: बहुत बढ़िया
0: समझना है, आसपास की चीज़ों को देखकर सीखना है।
1: जी
0: जो सफल लोग हैं, बड़े लोगों की दोस्ती करनी है, जो आपसे उम्र
1: बहुत
0: में बड़े
1: बढ़िया
0: हैं और जो सफल हैं,
1: जी
0: जो विफल हैं उनसे आप गलतियां करना सीखोगे, या फिर
1: बिल्कुल
0: विफल हैं तो आप उनको देखो और सीखो कि क्यों
1: बिल्कुल
0: विफल हैं,
1: बहुत
0: तो इम्प्रूव
1: बिल्कुल
0: करो,
1: बिल्कुल
0: तो लोगों
1: बिल्कुल
0: की कमियों से इम्प्रूव करना है और लोगों की अच्छाइयों से सीखना है।
1: जी बिश्व जी, कहा जाता है कि आर्मी में 3-4 साल या जब भी आपका कैरियर जो रहता है, आर्मी का कैरियर रहता है, उसमें एक एक साल के लिए या कुछ दिनों के लिए आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ता है, तो क्या है ये?
0: ये जम्मू जाने का जो है ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है, जम्मू या फिर नॉर्थ ईस्ट, इसको
1: हाँ
0: आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपकी यूनिट जो है वो वहाँ जा रही है, उस फील्ड में, उस लोकेशन में जा रही है, तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक यूनिट मिल जाता है, आपको एक परिवार मिल जाता है। अब ऊपर से अगर आदेश आया हुआ है आपके परिवार को वहाँ ड्यूटी देनी है, तो आपको अपने
1: जी
0: परिवार के साथ जाना पड़ेगा।
1: चलिए
0: तो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो बॉर्डर्स पे और एलसी पे सर्व
1: बिल्कुल
0: करते हैं,
1: बिल्कुल
0: बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है। आपको पता चलता है कि देश की असल में परेशानियां हैं क्या,
1: बिल्कुल
0: वरना आधे से ज्यादा लोग तो अड़ोसी पड़ोसियों से कि
1: बहुत
0: भैया
1: बढ़िया
0: हमारे दरवाजे पे पानी फेंक दिया,
1: बिल्कुल
0: इन चीज़ों में
1: बिल्कुल
0: पड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये चीज़ें असल में प्रॉब्लम्स नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो हमारी इंडिया रशिया के साथ रिलेशंस हैं, इंडिया यूएस के साथ रिलेशंस
1: बिल्कुल
0: हैं, जो
1: बहुत
0: हमारे
1: बढ़िया
0: सी बॉर्डर्स हैं, ये असल प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको फिर इन छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फलाने का लड़के ने ऐसा बोल दिया, या फिर वो ऑफिसर बन गया, या मतलब लोग दूसरों की बातें करने में अधिक समय
1: बहुत
0: व्यर्थ करते हैं,
1: बढ़िया बिल्कुल
0: खुद पर काम करने पे विश्वास कम करते हैं।
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आप हमारे साथ आए और स्टूडियो में आपने समय दिया, खास तौर पर युवाओं के लिए आपने प्रेरणा बनकर यहाँ पर आए हैं, और उनके लिए मोटिवेट जो शब्द आपने कहे हैं और साथ में आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है, और रेडियो बुंदेलखंड परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, साथ में शुभकामनाएं देते हैं, और चल चलते हमारे साथियों को बस दो शब्द बोलते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, आप आए
0: दो शब्द सिर्फ 15 15 सेकंड के लिए मैं कहूँगा।
1: बिल्कुल
0: इंग्लिश में एक बहुत अच्छी लाइन होती है, इफ़ यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट
1: जी
0: देन डोंट स्टॉप वर्किंग फॉर इट। मतलब अगर आप उस लक्ष्य या उस काम के प्रति सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मेहनत करना भी बंद नहीं करना है। और बाकी तो सब कुछ जीवन सिखाई देता है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु
0: जी
1: जी
0: मैं बुंदेलखंड रेडियो चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि
1: जी
0: मुझे ये अवसर प्रदान किया आपने।
1: बहुत बढ़िया, धन्यवाद।

0: थे हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने काफी संघर्ष किया और उसके बाद अपना लक्ष्य नहीं भूले। तो श्रोताओं, आपकी भी ऐसी कहानी हो सकती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करें।
1: तो साथियों, हमारा अब वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफलता की कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम को।
0: बिल्कुल, तो अब हम मनीष जी चलते हैं और चलते चलते श्रोताओं को नंबर एक बार बता देते हैं।
1: नंबर है हमारा 94-25-14-17-26।
0: फिर होगी आपसे जल्द ही मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, यह वही गीत है जो पिछले 10 वर्षों से हर गली, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे और हर बस्ती में बज रहा है। हमें उस दिन की याद दिलाते हुए जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी।
1: बिल्कुल, वह दिन कैसे भुलाया जा सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लाल किले से कहा था कि स्वच्छता केवल किसी एक व्यक्ति, परिवार, गांव या मोहल्ले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: यह वास्तव में महात्मा गांधी जी के सर्वजन स्वच्छता के सपने को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गांधी जी के अनुसार शारीरिक तंदुरुस्ती और एक स्वस्थ पर्यावरण स्वच्छता के बिना

0: संभव नहीं है। और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से अपील की कि हमें भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए तेजी से बढ़ना होगा, जो राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: ओहो, यह धुन सुनकर तो हम बहक गए और अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम के बारे में बताना ही भूल गए।
0: हाँ हाँ, तो दोस्तों आज हम एक विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। और यह कार्यक्रम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आएंगे मैं यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं आपका दोस्त माता दीन। और इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त 2014 के भाषण के कुछ अंश से करेंगे।
2: 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पूरा ही आज भी हमारी माता और बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं? डिग्निटी ऑफ वुमेन क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं आते हैं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव हो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐसराएं जगाती है और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती है तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षधार हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के एक साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो तब विश्वास के साथ खड़े हो, तब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है।
1: आप सोच रहे होंगे कि हम स्वच्छ भारत मिशन की बात क्यों कर रहे हैं?
0: हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए 12 एपिसोड की एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम स्वच्छता और स्वच्छ भारत मिशन में अब तक की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि स्वच्छ भारत के लिए हमें लगातार प्रयासरत क्यों रहना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन यह सफलता टिकाऊ रूप से बनी रहे इसके लिए हमें काम करते रहना होगा।
1: आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत बहुत बड़े बदलाव देखे गए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा माता दीन, जब 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था तब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 40% से भी कम घरों में शौचालय की सुविधा थी। लगभग 80 करोड़ लोग ग्रामीण भारत में रहते थे और इनमें से 55 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे।
1: इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण में 2019 तक ध्यान इस बात पर था कि हर व्यक्ति को शौचालय के उपयोग के महत्व और फायदों के बारे में समझाया जाए। इस कार्यक्रम ने परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया ताकि हर कोई शौचालय का उपयोग कर सके। इसके साथ ही यह जागरूकता भी फैलाई गई कि हर व्यक्ति को नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करना चाहिए बिना किसी अपवाद के।
0: और इस प्रक्रिया में भारत को खुले में शौच से मुक्त ODF बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया गया। मिशन ने शौचालय निर्माण और उपयोग को प्राथमिकता दी और पूरे समुदाय में शौचालय उपयोग की आदत डालने के लिए ठोस व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया।
1: यह बदलाव सामुदायिक भागीदारी के बिना संभव नहीं था। यह सबको पता था कि जब तक पूरा समुदाय एक साथ नहीं आएगा, जब तक खुले में शौच की स्थिति हासिल करना असंभव होगा। इसलिए हर घर में

0: शौचालय निर्माण और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी महत्वपूर्ण थी। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ा।
1: प्रत्येक व्यक्ति को खुले में शौच खत्म करने के इस मिशन में भाग लेना था और सामूहिक रूप से भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित करना था। हमने उन परिवारों को देखा है जिन्होंने नई बहू के लिए नए शौचालय बनवाए। हमने भाइयों को रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को शौचालय उपहार में देते हुए देखा है। उस समय पूरे समुदाय ने एक साथ आकर यह सुनिश्चित किया कि हर कोई शौचालय का उपयोग कर रहा है। भारत ने 2 अक्टूबर 2019 को ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस ODF से खुले में शौच का दर्जा हासिल किया।
0: पहले चरण की इस बड़ी सफलता को देखते हुए इसे बनाए रखने और स्वच्छता को शौचालय निर्माण से आगे ले जाने के लिए 2019 में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण में कुछ अतिरिक्त घटकों को जोड़ा गया।
1: संक्षेप में आइए आपको स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जिसे ODF प्लस भी कहा जाता है, के मुख्य घटकों से परिचित कराते हैं। यह है शौचालय निर्माण और उनका उपयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता में सुधार और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना। इसके अलावा सभी नए घरों के लिए शौचालय बनाना अनिवार्य है। हालांकि इन लक्ष्यों पर आगे आने वाले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे।
0: दोस्तों, पहले 10 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उपलब्धियों की स्थिरता बनी रहे। हर परिवार को अपने शौचालय के रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पुरानी आदतों में ना लौटे।
1: सही कहा माता दीन, पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। आज भी लोग अपने घर को तो साफ करते हैं, लेकिन कचरा बाहर फेंक देते हैं। वे अपने शौचालय साफ रखते हैं, लेकिन स्कूल, आंगनबाड़ी या सार्वजनिक शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी नहीं लेते।
0: हम में से अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह सफाई कर्मियों का काम है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह हमारा गांव है, हमारे बच्चे इन जगहों पर जाते हैं, इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर यह हमारा कचरा है तो इसे सही जगह पर फेंकने की जिम्मेदारी भी हमारी है।
1: जब तक सामूहिक जिम्मेदारी की भावना नहीं जागेगी और समुदाय की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
0: ऐसा माना जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है, जो एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया है। उसमें असंभव लगने वाली उपलब्धि को संभव किया। पूरे देश में हर राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव में लोग एक साथ आए और सुनिश्चित किया कि हर पंचायत और हर जिला समयबद्ध तरीके से खुद को ODF घोषित करे।
1: इस कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। 2014 से 2024 के बीच देश भर में 11 करोड़ से अधिक नए शौचालय बनाए गए। 55 करोड़ लोगों को घरों में शौचालय की सुविधा मिली। हालांकि केवल शौचालय बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका उचित उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परिवार के सदस्य का लगातार शौचालय का उपयोग करना, पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, गंदे पानी के रिसाव को रोकना, सोख गड्ढों की नियमित सफाई और मरम्मत तथा रखरखाव आवश्यक है, ताकि प्राप्त लाभ स्थायी रह सके।
0: हाँ बिल्कुल, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पीछे ना छूटे और गांव पूरी तरह से स्वच्छ बने रहें, सार्वजनिक भागीदारी और सामूहिक चेतना को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
1: कुछ स्थानों पर हमने देखा है कि लोगों ने शौचालय बनाए हैं, लेकिन उन्होंने उनका उपयोग ना करने के बहाने ढूंढ लिए हैं। पानी की कमी, स्वच्छता की चिंता या सामाजिक मान्यताएं।
0: लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद उन्हें शौचालय का उपयोग न करने के परिणाम को समझना चाहिए। खुले में शौच पर्यावरण को दूषित करता है, विशेष रूप से मिट्टी और पानी को। लोग विशेष रूप से बच्चे मिट्टी, भूजल और भोजन के दूषित होने के कारण बीमार पड़ते हैं। इससे स्वास्थ्य खराब होता है, कुपोषण बढ़ता है और दीर्घकालिक रूप से आंत संबंधी समस्याएं जैसे कि बीमारियां और शरीर का कम विकास या स्टंटिंग हो सकती है। बच्चे स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं और वयस्क काम और मजदूरी से वंचित रहते हैं, जिससे इलाज में ज्यादा खर्च होता है। खुले में शौच की लागत एक शौचालय की मरम्मत, सोख गड्ढे की सफाई या पानी की पाइपलाइन के रखरखाव की लागत से कहीं अधिक है।
1: बिल्कुल सही कहा माता दीन। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार यह समझे कि हर घर में एक कार्यशील शौचालय होना आवश्यक है और हर बार बिना किसी चूक के उसका उपयोग करना और भी अधिक आवश्यक है।
0: जरा सोचिए उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है जो अपने घर में शौचालय की सुविधा और उपयोग से वंचित रहते हैं, खुले में शौच करने के लिए अपनी गरिमा खो देते हैं।
1: यह सोचना भी कठिन है कि कोई व्यक्ति वर्षा ऋतु में, सर्दी की रातों में या तब जब कोई बीमार हो और बार बार शौचालय जाना पड़े तो खुले में शौच के लिए कैसे जा सकता है।
0: शौचालयों का रखरखाव ना करना एक अपराध ही है। हमारे घरों में शौचालय के उपयोग और रखरखाव की जिम्मेदारी हर परिवार की है, कोई अन्य विकल्प नहीं है। हमें अपनी संपत्ति और उन चीजों की देखभाल करनी होगी जो हमारे जीवन को सुधारती हैं, हमें गरिमा और आराम देती हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने अभी हमें संदेश भेजा है। वह कहते हैं, ठीक है, हम अपने व्यक्तिगत शौचालयों की देखभाल करेंगे, लेकिन सार्वजनिक शौचालयों और सामुदायिक स्वच्छता सुविधाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी कौन लेगा।
0: बिल्कुल, यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन हम जानते हैं कि कई उदाहरण हैं जहां समुदाय एक साथ आए हैं और समितियां बनाई हैं ताकि इन जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा ग्राम पंचायतों ने नियमित रूप से स्वच्छता की जांच करने की जिम्मेदारी ली है। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में समुदायों ने एक शौचालय कोष बनाया है। हर कोई इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान देता है और इसका उपयोग सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के लिए किया जाता है। पंचायत या गांव की जल और स्वच्छता समिति BWSC को एक साथ आकर सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों तथा गांव की स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
1: यह वास्तव में एक अच्छा विचार है। दोस्तों, हमें मिलकर खुले में शौच को समाप्त करना होगा। हमें अच्छी प्रथाओं की स्थिरता के बारे में अधिक गंभीरता से सोचना शुरू करना होगा। इसलिए यदि आपको अभी भी किसी गांव में खुले में शौच की समस्या दिखाई देती है तो पहला कदम जागरूकता बढ़ाना है। लोगों को समझाएं कि खुले में शौच बीमारियां फैलाता है। अपने ग्राम पंचायत और BWSC से संपर्क करें ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। हमें सभी को अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। क्या हम अपने बच्चों को बीमारियों से भरा भविष्य देना चाहते हैं या एक स्वच्छ भविष्य।
0: क्या आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2023 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बेहतर स्वच्छता और शौचालय उपयोग ने डायरिया और अन्य जल जनित रोगों से 3 लाख से अधिक मौतों को रोका है। आपके गांव या समुदाय में कोई व्यक्ति खराब स्वच्छता के कारण मर सकता है, यही प्रभाव शौचालय उपयोग से लाया गया है।
1: मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता बनाए रखने के लिए खुले में शौच की समस्या के बारे में लगातार चर्चा की जानी चाहिए और शौचालयों के लाभ

0: सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को ग्राम सभाओं में भी खुले तौर पर चर्चा में लाया जाना चाहिए। हमें स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को आदत के रूप में अपनाने पर जोर देना चाहिए।
1: और यह जानने के लिए ग्राम समितियां कैसे काम कर रही हैं और वे क्या कदम उठा रही हैं, आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है ग्राम पंचायत प्रतापपुरा से ग्राम समिति के सदस्य सुमित जी को। हम उनका स्वागत करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने गांव में शौचालय उपयोग और रखरखाव को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं।
2: धन्यवाद जी। और पहले हमारे गांव में कई लोग खुले में शौच करते थे। जब उन्होंने शौचालय उपयोग के लाभों को समझा तो आदतें धीरे धीरे बदल गईं। अब गांव की लगभग हर घर में शौचालय है और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं।
0: यह बहुत अच्छी बात है कि क्या केवल शौचालय बनाना पर्याप्त है? लोगों को उनका रखरखाव करने के लिए कैसे प्रेरित आप करते हैं सुमित जी?
2: स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह सभी की जिम्मेदारी है। यह केवल पंचायत का कर्तव्य नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। यदि हम मिलकर काम करें तो न केवल हमारा गांव बल्कि पूरा देश स्वच्छ और स्वस्थ बन जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शौचालय उपयोग योग्य स्थिति में बना रहे, और मिलकर हमें सार्वजनिक शौचालयों का सही ढंग से रख रखाव करना चाहिए। हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे पड़ोसी और समुदाय भी सुरक्षित रहेंगे।
1: बहुत धन्यवाद। स्वच्छ भारत मिशन के कारण पूरे भारत में स्वच्छता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कभी शौचालय की कमी एक बड़ी समस्या थी, अब यह समस्या काफी हद तक हल हो गई है। इसका स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे बच्चों में बीमारियों में कमी आई है।
0: हमें स्वच्छता को केवल एक अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे एक आदत के रूप में अपनाना चाहिए। इसके लिए पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों के युवाओं, सामुदायिक नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, मीडिया और सामाजिक संगठनों की निरंतर भागीदारी आवश्यक है।
1: बिल्कुल सही, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना होगा।
0: तो दोस्तों, यदि हम हमेशा शौचालयों का उपयोग करें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, कचरा प्रबंधन में योगदान दें और स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना हकीकत बन सकता है।
1: यह हमारा संकल्प होना चाहिए। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
0: तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम साथ मिलकर अपने घरों, मोहल्लों, गांवों और शहरों को स्वच्छ रखेंगे। हमेशा कचरे को डस्टबिन में डालेंगे और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करेंगे। खुले में शौच से बचेंगे और दूसरों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखेंगे। प्लास्टिक कचरे और अन्य हानिकारक सामग्रियों को उचित प्रबंधन करेंगे। स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत बनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के निर्माण में सक्रिय भाग लेंगे।
3: और याद रखें, संपूर्ण स्वच्छता अब हमारी जिम्मेदारी है।
4: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी।